ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं। किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं?

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
3: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थे सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
3: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।

0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणीमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की बहन बोनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी लेनी एक नया विषय निहाते। तो बहन बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि खेतनी मेड माते आपड़े कया कया पौधा लगाड़ी शकन एना नो हूं लाभ थई शके। तो आना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी आप तक की घना कानी बात थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरावी दा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमवरता रहो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બાઈનબોનું ગીત તો આયશું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણેમાન સ્વાગત કરો હું અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે બાઈનબોનું ગીત કે પહેલા આપને વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે ખેતરની મેળ માટે આપણને કયા કયા પૌધો લગાડવા હે તો આના વિષય માટે વાતચીત કરવા ભલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી માંગીલાલજી તો સૌથી પહેલા આપણે હામરી લાણાની વાતે મોરે કર આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર જી
0: સર આપકા બહુ બહુ સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: જી ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જોડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે ખેત કી મેડ પર કિસાન ભાઈ બહેન કોન કોન સે પૌધે લગા સકતે હૈ જિસસે ઉન્હે લાભ મિલે
1: જી તો દેખિયે જૈસે આપકા સવાલ હૈ યે બહુત હી મહત્વપૂર્ણ સવાલ હૈ ઓર કભી કભી ક્યા હૈ કી હમ લોગ સિર્ફ મેડ કો હમ યે સમજતે હૈ કી યે તો ખેત કી સીમા તય કરને કે લિયે હૈ ઓર યે તો ખેતોં કો અલગ અલગ હિસ્સોં મેં બાંટતી હૈ તો ઇસ તરહ કી ધારણાએ હૈ હમારે કિસાન ભાઈઓં કી ઓર હમારે અંદર હમેશા હોતી હૈ લેકિન જો હૈ કી મેડ કા મતલબ યે નહીં હોતા કી વો સીમા હૈ યા વો ખેતોં કો અલગ અલગ દર્શાતી હૈ મેડ હૈ આપકે પાસ એક અતિરિક્ત આય પ્રાપ્ત કરને કા સંસાધન હૈ ઓર વો જગહ હૈ જહાં પે આપ કર સકતે હૈ તો ઇસમે જૈસે હમ બાત કરતે ફલદાર પૌધે હૈ ચારા હૈ ઔષધિ હૈ ઈંધન હૈ લકડી હૈ યા હમ પૌધે હૈ વો અલગ અલગ પ્રકાર કે વો લગા સકતે હૈ તો ઇસ તરહ કી જો હૈ સોચ હમારે અંદર હોની ચાહીએ કી હમે ઉસ મેડ કા સહી ઉપયોગ ક્યા કરના ચાહીએ
0: બિલકુલ
1: તો યહાં પે જૈસે હમ બાત કરતે કી મેડ પે ક્યા હમ લગા સકતે હૈ જિનસે કિસાનો કો લાભ પ્રાપ્ત હો તો જૈસે હમ બાત કરતે પહેલા હૈ કી હમ ફલદાર પૌધે જિસમે ફલદાર પૌધે હૈ જો આપ મેડો પે લગા સકતે હૈ જિસમે આપ દેખના ચાહોગે તો સબસે પહેલે હમ બાત કર જૈસે બેર હૈ આંવલા હૈ જૈસે આંવલા કે અલાવા આપ દેખોગે તો કરોંદા હૈ સીતાફલ હૈ યે જો ચીજે હૈ આપ યહાં પે લગા સકતે હૈ ઇસકે અલાવા જો હૈ આપ દેખેંગે તો ઇસસે ક્યા હૈ એક તો આપકા જો પોષણ હૈ વો આપકા પરિવાર કો પોષણ મિલેગા દૂસરા આપકા ઇસસે એક અતિરિક્ત આય ભી હોગી કે આંવલા બેચ સકતે હો નીબૂ બેચ સકતે હો કરોંદા બેચ સકતે હો સીતાફલ હૈ વો આપ બાજાર મેં બેચ સકતે હૈ યા સ્થાનીય માર્કેટ મેં આપ ભી બેચ સકતે હો ઉસી તરહ ક્યા હૈ કી જૈસે ચારા દેને વાલે કે હમારે જો પશુ હોતે હૈ ઉનકે લિયે ચારે કી આવશ્યકતા હોતી હૈ લેકિન મેડો પે જૈસે સહજન હૈ યા કરંજ હૈ ઇસ તરહ કે અગર પૌધે યા ફિર હમ જો ઘાસ નહીં હોતી હૈ જો હમારી તો ઘાસ કે પૌધે લગા સકતે હૈ તો ઉસસે ક્યા હોગા કે આપકે પશુઓ કે લિયે ચારા હોગા ઓર પશુઓ કે ચારે મેં એક વિવિધતા આપકે જો હૈ અલગ સે આયેગી ક્યોંકિ હમારા જો સ્થાને ચારા આપ બાર બાર વહી ખિલાતે હો તો એક દો અતિરિક્ત જો ચારા હૈ ઉસકી વ્યવસ્થા હોગી
0: જી જી બિલકુલ
1: इसी तरह जैसे औषधि पौधे हैं जैसे आप तुलसी लगाओ सहजन है जैसे नीम है वो आप लगा देंगे तो वहां से जो है एक तो घरेलू उपयोग के लिए आ जाएगी क्योंकि हमारे किसान भाइयों के पास बहुत सारी बकरियां होती है पशु होते हैं तो आप नीम का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं
0: बिल्कुल
1: कि उसको अब अगर आपके घर में उपयोग ले तो दवाई के रूप में उपयोग ले सकते हो दूसरा है कि आप पशुओं को खिला सकते हैं तो इस तरह से हमें इस तरह के पौधे उसी तरह आप तुलसी का भी अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं
0: जी जी
1: हम बात करते हैं कि बहुउद्देश्य पौधे हैं तो उसमें भी क्या है कि जैसे हम अलग अलग प्रकार के पौधे हैं जो वो लगा सकते हैं जिसमें नीम की तरह करंज है सहजन है आप जो है आंवला आप और लगा सकते हैं तो ये क्या है कि आपको छाया तो देंगी इसमें आपका जो पोषण है वो भी होगा दूसरा होगा अतिरिक्त आय के लिए एक संसाधन है वो आपको उपलब्ध होगा
0: बिल्कुल
1: तो इसी तरह जो है हमें ये पौधे वहां पे लगा देने चाहिए दूसरा है कि अगर हमारे जो खेत है मेड है और उसके पास रोड जा रहा है मान लो तो उस तरफ आप आर पार जो है जैसे हमारे नीलगिरी का पौधे हैं आप वो लगा दें आप नीम लगा दिया आपने जैसे हमारा सागवान है वो उस रोड की साइड आप लगा सकते हो अगर खेत आपके रोड की साइड तो
0: जी
1: तो आपको क्या है कि अतिरिक्त आय के लिए जो है पूरा एक संसाधन खड़ा हो जाएगा आपका दूसरा होगा कि जलाने के लिए आपको लकड़ी मिलेगी वहां से आपको कचरा जो पत्तियों का होगा वो आपको खाद के रूप में काम आएगा और आपके जो खाद है और उनकी जो विविधताएं होती है पौधों की तो उन विविधताओं से बना हुआ जो खाद है वो काफी पौष्टिक होता है और आपके खेत को बहुत सारा जो लाभ पहुंचाता है तो इस तरह से हमें इन पौधों का उपयोग हमारे मेड़ों पर करना चाहिए
0: बिल्कुल सर आपने सही बताया जैसा कि आपने बताया कि हम खेत की मेड़ पर कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं और वो कैसे हमारे लिए उपयोगी होते हैं यही अब मैं जानना चाहूंगी कि मेड़ पर पौधे लगाने के प्रमुख लाभ क्या हैं जो हमारे किसान भाई बहनों को पता होने चाहिए
1: जी तो देखिए प्रमुख लाभों की हम बात करते हैं तो हमें सीधा सा ये पता लगता है कि अगर फलदार पौधे हैं या आपने अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए तो पहले तो फल मिलेगा आपको फल के साथ साथ में आपको अधिक पौधे लगाने के लिए बीज प्राप्त होगा, चारा होगा और आपके घर के उपयोग के लिए लकड़ी प्राप्त होगी
0: जी।
1: और अगर वो अधिक है तो वो आप उससे आय प्राप्त कर सकते हो दूसरे को बेचकर। इसी तरह सबसे दूसरा है कि मिट्टी का संरक्षण, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ढलान वाली जमीन ज्यादा है, हमारे आसपास पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं, तो जो मृदा कटाव का जो समस्या है, अगर इस तरह के पौधे लगाते हैं जैसे बांस है, तो अगर उस तरह के पौधे हम वहां लगाते हैं तो हमारी मृदा का क्षरण नहीं होगा, उसको नुकसान नहीं होगा और हमारा संरक्षण होगा मृदा का। इसी तरह जो खेत की जो मेड़ है वो भी मजबूत रहेगी आपकी, क्योंकि जो पौधों की जड़ियां होती है ना वो बहुत गहराई तक जाती है
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो गहराई तक जाती है तो आपकी मेड़ की जो स्ट्रेंथ वो बढ़ जाएगी, अगर ज्यादा पानी भी गिरेगा तो मेड़ आपकी नहीं टूटेगी
0: जी जी।
1: इसी के साथ जो है पशुओं के लिए चारा, कि आपको जैसे उनकी टहनियां होती है पेड़ों की, तो उसके माध्यम से आपको चारा प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं नीम है, तो बकरियां हैं तो आपको आराम से उनके लिए चारा हो गया वो
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह जो है जैसे परिवार के पोषण की हम बात करते हैं, तो इसके लिए जैसे बहुत सारी डाइवर्सिटी की बात करते हैं जैव विविधता की, तो जैसे बेर है, आंवला है, नींबू, करौंदा, सहजन है, या आपके घर के उपयोग के लिए सागवान है, आपके सीताफल है, आपने अगर पपीता लगाया तो पपीता है, आपने जामफल लगाया तो जामफल है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके पोषण में मदद करेगी
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह हम बात करते हैं कि जैसे विविधता की बात करते हैं, तो जैव विविधता को बढ़ावा भी देती है, क्योंकि आपके पौधे अलग अलग प्रकार के होंगे तो आपके आसपास अलग अलग प्रकार के पक्षी, मधुमक्खियां, कीट वो आसपास आएंगे, जो कि हमारे जो पर्यावरण है उसमें वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं
0: बिल्कुल।
1: तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है हमारा लाभ रहेगा आपका। इसके साथ ही जो है हम बात करते हैं कि जैसे स्थानीय तौर पर हम देखते हैं कि कुछ ही पौधे जो है हम लगाते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि पौधों से एक मेड़ पे भी हम आय प्राप्त कर सकते हैं
0: जी जी।
1: तो हमारे लिए एक अच्छी जगह है जो हमारे खेत की खुद की मेड़ है, उस पे हमको इस तरह के पौधे लगाने चाहिए
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि इसके कई सारे लाभ हैं, तो यही अब जानना चाहूंगी कि पौधे लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है।
1: देखिए पौधे लगाते समय हमारा जो परंपरागत ज्ञान है या हमारे बुजुर्ग है उनके साथ एक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जलवायु के अनुसार कौन से पौधे हैं जो वहाँ सक्षम होते हैं वो जानकारी आपको अच्छे से वो हमारे बुजुर्ग दे सकते हैं।
0: हाँ,
1: दूसरा कि वहाँ के जो मिट्टी कैसी है, मिट्टी का भी जो आप देखें जगह कैसी है, जैसे अगर मान लो आपके वहाँ से नाला जा रहा है तो नाला जा रहा है तो आप वहाँ पे बांस लगाइए, क्योंकि बांस की जो जड़ें होती है वो जाल की तरह होती है
0: बिल्कुल,
1: तो वो आपकी मिट्टी का कटाव नहीं होने देगा। तो हमें उसका चयन करना पड़ेगा कौन सा पौधा हम कहाँ लगा सकते हैं, तो वो ध्यान रखना है। इसी तरह जैसे कुछ फसलें ऐसी होती है जो छाया में नहीं होती है, तो आप देखें कि अगर जो फसलें हैं उसकी जो जगह है मेड़ की वो कितनी चौड़ी है, उस चौड़ाई देख के उस टाइप का पौधा लगाना चाहिए
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अगर चौड़ाई कम है, आपने बहुत भारी पौधा लगा दिया, तो पौधे की छाया में बहुत कम फसलें होती है जो छाया में हो पाती है, बाकी वहां थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरह से पानी की उपलब्धता हो वो स्थान चुने कि आसानी से हम पानी दे सके, ऐसा नहीं खेत हमारा 2 किलोमीटर है जाके सिर्फ पौधा लगा के आ गए हम और वहां पानी देने ही नहीं गए, तो उसका हम ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सबसे अच्छा है जो हमारी जो जलवायु में जो पौधा है वो तैयार हुआ है वो ही पौधा लगाएं, अगर बाहर से लाके आप लगाएंगे तो हो सकता कि वो सक्सेस ना हो, तो उस तरह से हम ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ में जैसे मेड़ पे पौधे लगाएं तो मेड़ पे पौधे का चयन, उसकी जलवायु, वो कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ का बीज है और कहाँ वो पनपा है, वो सारी चीजों को देख कर चयन करके आपको उसकी आवश्यकता अनुसार आपकी मेड़ आपके खेत को देखते हुए आप उसका चयन करें।
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बताया कि खेत की मेड़ पर हमारे किसान भाई बहनों को कौन से पौधे लगाने चाहिए और उससे क्या लाभ होते हैं, ढेर सारी बातें हम आपके माध्यम से जान पाए हैं। तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी श्रोता गणों को ये संदेश देना चाहूंगा कि अपनी भूमि और आवश्यकता अनुसार मेड़ पर कुछ उपयोगी पौधे लगाने चाहिए, उनकी योजना बनानी चाहिए, ताकि आज लगाया हुआ पौधा है जो आने वाले वर्षों में परिवार, पशुओं, खेत और पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी बन सकता है
0: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया
1: जी, धन्यवाद।
0: जिम की भाई बोनो अवड़े आपड़े वैस में मंगेलाल जी जुड़े तक कहा था ने एने आपने घनी अशल तरीका थे की घना कानी बातें बताड़ी है, કે અગર આપણે ખેતરની મેળ માટે પેડ પૌધા લગાડવા હો તો એવા પૌધાનું આપણને ચયન કરવું હે જે આપણે વધારે આય આપણને આલી શકીએ ને એને સાથે આપણે ખેતરને ભી ઘણા કાનો લાભ થાકા. તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હુંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું. તો સૂટો તો પડ પણ સાથે પહેલે આપની હમરા વિદાય કરગીત ને મોરે પડો સૂટા.

सेहत नु राज हूं है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में सबसे पहले हमारा आप सभी से एक सवाल है कि अगर घर में बेटा और बेटी दोनों हो तो क्या दोनों के सपनों को उड़ान भरने के लिए एक जैसा आसमान मिलता है? क्या बेटे से कहा जाता है कि तुम बड़े होकर जो बनना चाहते हो बनना, खूब पढ़ना, आगे बढ़ना और अपने पैरों पर खड़े होना? और क्या बेटी से भी यह जो चीज है उतनी ही सहजता से कही जाती है?
0: बिल्कुल,
1: कि तुम भी अपने सपनों को चुन सकती हो, खूब पढ़ सकती हो, खेल सकती हो, अपना हुनर निखार सकती हो और जीवन में अपनी पहचान बना सकती हो। साथियों, समानता की बात हम अक्सर बड़े बड़े मंचों पर करते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन समानता की असली शुरुआत किसी मंच से नहीं कशिश, हमारे अपने घर से होती है और इसकी सबसे मजबूत नींव बचपन में रखी जाती है। दोस्तों, जब बेटे को साइकिल चलाने, बाहर खेलने और अपनी पसंद चुनने की आजादी मिलती है तो बेटी को भी वही अवसर क्यों न मिले।
0: जी हाँ।
1: जब बेटी से घर के छोटे काम सीखने की उम्मीद की जाती है तो बेटे को भी घर की जिम्मेदारी क्यों न सिखाई जाए। जब बेटी की पढ़ाई को भविष्य का निवेश माना जाता है तो बेटी की शिक्षा को भी उतना ही महत्वपूर्ण क्यों न समझा जाए। यही सवाल आज हमें अपने आप से पूछना है।
0: बिल्कुल।
1: हमारा आज का विषय है कशिश, बेटा बेटी को समान अवसर देने की शुरुआत बचपन से हम कैसे करें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर आज हम कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बेटा बेटी को मिले समान अवसर देने की शुरुआत को लेकर। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारी आपसे रही थी और हम जान पाए थे साथियों कि हमें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने होंगे।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि बच्चा जन्म से यह लेकर नहीं आता कि कौन सा काम लड़के का है और कौन सा काम लड़की का। वह परिवार और समाज से देखकर ही सीखता है। अगर साथियों घर में बच्चा देखता है कि पिता भी घर के कामों में हाथ बटाते हैं, माँ भी महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी राय रखती है, भाई और बहन दोनों को पढ़ाई के समान अवसर मिलते हैं और दोनों की बात सुनी जाती है,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके मन में समानता स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। लेकिन अगर बच्चा अंजलि जी ये कुछ बातें हैं जो बार बार सुनता है, जैसे कि ये लड़कियों का काम नहीं है, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों को इतनी बाहर घूमने की जरूरत क्या है और बेटा तो घर का नाम रोशन करेगा, तो श्रोता साथियों ये सभी बातें सुनकर धीरे धीरे उनके मन में लड़के और लड़की के लिए अलग अलग मापदंड बनने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए समानता की शिक्षा किताबों से पहले घर के व्यवहार से शुरू होती है। अंजलि जी,
1: जी हाँ, यही श्रोता साथियों बात आती है शिक्षा में दोनों को समान अवसर देने की। जी हाँ श्रोता साथियों, बेटा हो या बेटी, शिक्षा दोनों का अधिकार है और भविष्य बनाने का महत्वपूर्ण साधन भी।
0: बिल्कुल,
1: कई परिवारों में कशिश आज भी सीमित आर्थिक संसाधन के कारण यह सोच देखने को मिलती है कि बेटी की पढ़ाई पर खर्च करना जरूरी है, जबकि बेटी तो आगे चलकर दूसरे घर चली जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोता साथियों यकीन मानिए हमें यह सोच बदलनी होगी, क्योंकि बेटी की शिक्षा केवल उसकी व्यक्तिगत प्रगति नहीं होती है। शिक्षित बेटी अपने अधिकारों को समझती है, सही निर्णय लेने में सक्षम होती है, परिवार और समाज के विकास में योगदान देती है और आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर दिशा दे सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए यदि घर में संसाधन सीमित है तो समाधान यह नहीं होना चाहिए कि बेटी की पढ़ाई रोक दी जाए, बल्कि परिवार, विद्यालय और समुदाय मिलकर ऐसे रास्ते खोज सकते हैं कशिश, जिससे दोनों बच्चों की शिक्षा जो है वो जारी रह सके।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अंजलि जी खेल का मैदान भी दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों बचपन में खेल केवल मनोरंजन नहीं होता, खेल से शरीर मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, टीम वर्क और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। लेकिन अंजलि जी अक्सर हम बच्चों को खेल में भी लिंग के आधार पर बांट देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि बेटे को हम कहते हैं कि जाओ मैदान में खेलो और बेटी से कहते हैं कि घर के अंदर रहो, ज्यादा मत खेलो। साथियों ये सभी बातें क्यों? अगर बेटी क्रिकेट खेलना चाहती है तो उसे क्रिकेट खेलने दिया जाए। अगर बेटा नृत्य सीखना चाहता है तो उसे नृत्य सीखने दिया जाए। अगर बेटी कबड्डी खेलना चाहती है तो उसे अवसर मिलने चाहिए।
1: जी जी।
0: और अगर बेटा चित्रकला या संगीत में रुचि रखता है तो उसका भी उत्साह बढ़ाया जाए।
1: जी हाँ,
0: यानी कि साथियों बच्चे की रुचि को उसके लिंग से नहीं बल्कि उसकी क्षमता और पसंद से हमें जोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही निरंतर बनी रहेंगी।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से शिक्षा, खेल सभी में बेटा बेटी को हमें समानता देनी है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, घर के काम केवल बेटी की जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि समानता का सबसे व्यवहारिक पाठ घर से शुरू होता है। अक्सर बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है बर्तन रखना, कपड़े व्यवस्थित रखना, खाना बनाने में मदद करना, घर साफ करना, ये सभी। वहीं बेटों से कहा जाता है तुम रहने दो, ये काम तुम्हारा नहीं है। लेकिन अगर बेटा भी अपनी प्लेट खुद रखे, अपना कमरा व्यवस्थित करे, कपड़े तय करने में मदद करे, तो जरूरत पड़ने पर खाना बनाने में हाथ बटाए, तो उससे उसकी कोई ऐसी चीज नहीं कही जाएगी कि ये तो लड़कियों के काम है, तुम मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बच्चा बन पाता है। इसी तरह बेटी को भी केवल घरेलू कामों तक सीमित नहीं रखा जाए श्रोता साथियों, उसे भी बाहर की दुनिया समझने, निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल साथियों, इसी के साथ अगर बात करें तो घर में कोई महत्वपूर्ण अगर निर्णय होता है तो केवल बेटे की राय पूछना और बेटे की बात को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। बच्चों की उम्र और परिस्थितियों के अनुसार अंजलि जी, उनकी बात हमें सुननी चाहिए। जैसे कि कौन सी गतिविधि में भाग लेना है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किस खेल में रुचि है, किस विषय को समझने में कठिनाई हो रही है। अंजलि जी, जब माता पिता बेटे और बेटी दोनों की बात ध्यान से सुनते हैं तो दोनों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही बच्चों को ये संदेश मिलता है कि मेरी बात की भी कुछ कीमत है। कई बार समानता केवल शिक्षा तक सीमित नहीं समझी जाती, जबकि इसका संबंध दोस्तों रोजमर्रा की सुविधाओं से भी होता है। अगर बेटी को पढ़ने के लिए शांत जगह मिलती है तो बेटी को भी मिलनी चाहिए। अगर बेटे के लिए किताबें खरीदी जाती है तो बेटी के लिए भी खरीदी जानी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: अगर बेटी को प्रशिक्षण या खेल की सुविधा मिलती है अंजलि जी, तो बेटी को भी इसके अवसर मिलने चाहिए। यानी कि साथियों, समानता का मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को बिल्कुल एक ही चीज मिले। समानता का मतलब है हर बच्चे को उसकी जरूरत और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का उचित अवसर दिया जाए।
0: बिल्कुल। यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि कई बार भेदभाव जानबूझकर नहीं होता, बल्कि पुरानी सोच के कारण होता है। हम बच्चों से कहते हैं लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां नाजुक होती है, लड़कों को घर चलाना होता है, लड़कियों को घर संभालना होता है। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। लड़कियां विज्ञान, खेल, शिक्षा, प्रशासन, खेती, व्यवसाय, तकनीक और अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वहीं लड़के भी खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, घर संभालना और परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। इसलिए बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि काम का कोई लिंग नहीं होता, काम करने की क्षमता इंसान के अंदर होती है।
1: बिल्कुल।
0: एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी। जी हाँ, जब बेटा रोता है तो अक्सर कहा जाता है लड़के रोते नहीं है। लेकिन रोना श्रोता साथियों कमजोरी नहीं होती है। दुख, डर, चिंता और असफलता जैसी भावनाओं को व्यक्त करना हर बच्चे के लिए स्वाभाविक है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह बेटी को भी हर समय चुप रखने या अपनी बात दबाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। बच्चों को सिखाएं कि अपनी बात कहना गलत नहीं है, मदद मांगना कमजोरी नहीं है और भावनाओं को समझना और व्यक्त करना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इससे बेटा बेटी दोनों भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ ही दोस्तों आप स्वयं भी उदाहरण बन सकते हैं। यानी कि अंजलि जी, बच्चों को समानता का सबसे प्रभावी पाठ भाषण से नहीं बल्कि माता पिता के व्यवहार से मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर घर में माता पिता एक दूसरे की राय का सम्मान करते हैं, काम को बांट कर करते हैं और निर्णयों में एक दूसरे को महत्व देते हैं तो बच्चे भी यही सीखेंगे। साथियों, अगर पिता घर के काम में सहयोग करते हैं तो बेटा भी सीखेगा घर केवल माँ या बहन की जिम्मेदारी नहीं है। अगर माँ परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी बात मजबूती से रखती है तो बेटी भी सीखेगी कि उसकी राय भी महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: कहने का मतलब यही है साथियों कि बच्चे वही ज्यादा सीखते हैं जो हमें वे करते हुए देखते हैं।
0: बिल्कुल श्रोता साथियों, अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारे गांव और समुदाय में भी बेटा बेटी की समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: गांव में बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित हो, लड़कियों को भी खेल मैदान का पूरा अवसर मिले, पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र दोनों के लिए कशिश सारी चीजें खुली होनी चाहिए।
1: जी जी।
0: बाल सभाओं में बेटियों की भागीदारी बढ़ाई जाए, बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच दिया जाए, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की जानकारी लेकर परिवार से संवाद किया जा सकता है, बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा को समुदाय की साझा जिम्मेदारी माना जा सकता है। जब पूरा समुदाय यह संदेश देता है कि बेटा और बेटी दोनों हमारे भविष्य हैं, तो सोच में स्थायी बदलाव आ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य का निर्माण केवल इस बात से नहीं होता कि उन्हें कितनी सुविधाएं मिली है, बल्कि इस बात से होता है कि उन्हें अपने बारे में क्या सोचने का अवसर मिला है। जब किसी बच्चे को बचपन से यह एहसास होता है कि उसकी आवाज सुनी जाती है, उसकी पसंद का सम्मान होता है, उसकी मेहनत को महत्व मिलता है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। इसलिए हमें अपने घरों में एक बार यह जरूर देखना चाहिए कि कहीं हमारी छोटी छोटी आदतें बच्चों के लिए अलग अलग रास्ते तो तय नहीं कर रही, किसे ज्यादा स्वतंत्रता मिल रही है, किसे ज्यादा उम्मीदें रखी जा रही हैं, किसी गलती को आसानी से स्वीकार किया जा रहा है और किसकी गलती पर ज्यादा रोक टोक हो रही है। इन सवालों के जवाब हमें अपने सोच को समझने में मदद करेंगे। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, निर्णय लेने की क्षमता, जिम्मेदारी निभाना, दूसरों का सम्मान करना और अपने फैसलों के परिणामों को समझना भी उतना ही जरूरी है। जब बेटा और बेटी दोनों इन गुणों के साथ बड़े होते हैं कशिश, तो वे न केवल अपने लिए बेहतर भविष्य बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक उदाहरण बन पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी भावनाओं को समझना किस तरह से शुरू कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर हम देखते हैं कशिश, हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, कौन क्या सोच रहा है, सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, किसने हमारे साथ अच्छा किया और किसने हमारे साथ बुरा किया। लेकिन श्रोता साथियों, क्या कभी हमने खुद से पूछा है कि मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों महसूस कर रहा हूं?
0: जी जी,
1: कई बार हम गुस्से में होते हैं लेकिन उसके पीछे असल में दुख होता है। कभी हम चुप रहते हैं लेकिन हमारे भीतर बहुत सारी बातें चल रही होती है। कभी छोटी सी बात हमें बहुत परेशान कर देती है और हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यही कारण है कि आज का हमारा विषय है, अपनी भावनाओं को हम समझना कैसे शुरू करें।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से बातें ढेर सारी करेंगे, लेकिन शुरुआत में पहले मनोरंजन करवा देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
0: तो साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपनी भावनाओं को समझना कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जागृति जी की भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं है, वे हमारे भीतर चल रही परिस्थितियों और अनुभवों के संकेत होती हैं।
1: जी हाँ,
0: उन्हें समझना श्रोता साथियों हमें खुद को बेहतर जानने, सही निर्णय लेने और रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल, युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कशिश की खुशी, दुख, गुस्सा, डर, चिंता, उत्साह, निराशा, अपनापन, अकेलापन, संतोष, ये सभी हमारे भावनात्मक अनुभव का हिस्सा है। हमारा मन हर परिस्थिति पर किसी न किसी तरह प्रतिक्रिया देता है।
0: जी जी।
1: परीक्षा का परिणाम आने पर खुशी या निराशा महसूस हो सकती है, किसी दोस्त के व्यवहार से दुख हो सकता है, किसी अवसर के मिलने पर उत्साह हो सकता है, किसी अनिश्चित परिस्थिति में डर या चिंता महसूस हो सकती है।
0: जी जी।
1: इन भावनाओं को महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। समस्या भावना होना नहीं है, समस्या तब होती है जब हम अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने के बजाय उन्हें दबाने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: या बिना सोचे उनके अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, पहला कदम है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ और दूसरा कदम है मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि युवावस्था जीवन का ऐसा दौर है जिसमें पढ़ाई, करियर, दोस्ती, परिवार, भविष्य और अपनी पहचान को लेकर कई तरह के अनुभव सामने आते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, इस दौरान मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, जैसे कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे दोस्त मुझसे आगे क्यों निकल रहे हैं, मैं अपनी पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ, घर वाले मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं और मुझे छोटी सी बात इतनी ज्यादा क्यों परेशान कर रही है। यानी कि साथियों, अगर हम इन भावनाओं को समझना सीखते हैं तो धीरे धीरे अपने व्यवहार को भी हम समझने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि मान लीजिए कि किसी युवा को किसी दोस्त ने जवाब नहीं दिया, वह तुरंत सोच सकता है जागृति जी कि शायद वह मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों, अगर वह अपनी भावनाओं को थोड़ा ठहर कर देखेगा तो समझ पाएगा कि मुझे वास्तव में उसके जवाब न देने से दुख हुआ है और शायद मैं इस रिश्ते को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, ये पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद वह जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर बात कर सकता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि गुस्सा एक सामान्य भावना है, हर इंसान को कभी न कभी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से के पीछे कई बार कोई दूसरी भावना छिपी होती है।
0: बिल्कुल,
1: कभी हम इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि हमें अनदेखा महसूस हुआ है, कभी इसलिए क्योंकि हमें चोट लगी है, कभी इसलिए क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी गई और कभी इसीलिए क्योंकि हम किसी परिस्थिति से निराश है। इसीलिए अगली बार गुस्सा आए श्रोताओं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से पूछें, मुझे वास्तव में किस बात ने परेशान किया।
0: बिल्कुल,
1: कुछ क्षण रुकना, गहरी सांस लेना, पानी पीना या थोड़ी देर उस परिस्थिति से दूर रहना हमें सोचने का अवसर दे सकता है। इसलिए याद रखिए श्रोताओं की भावनाओं को महसूस करना हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता, लेकिन उस भावना पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है ये सीखना हमारे लिए संभव है।
0: बिल्कुल, साथी श्रोता साथियों, दुख को कमजोरी मत समझिए, क्योंकि हमारे समाज में कई बार युवाओं को कहा जाता है जागृति जी कि इतनी सी बात पर दुखी क्यों हो रहे हो, मजबूत बनो, ज्यादा मत सोचो। लेकिन किसी बात से दुखी होना अपने आप में कमजोरी नहीं होती साथियों। अगर किसी घटना ने आपको बहुत ज्यादा दुखी किया है तो पहले अपने उस अनुभव को स्वीकार करना आपके लिए जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: आप खुद से ये कहें कि हाँ, मुझे इस बात से दुख हुआ है और मेरी भावना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि हम हमेशा दुख में रहेंगे। इसका अर्थ है सिर्फ इतना कि हम अपनी भावना को पहचान रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे हैं।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह का महसूस हो रहा है, हमें हमारी भावनाओं को किस तरह से समझना चाहिए,
0: जी
1: ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो भावना है उसका क्या महत्व है और हमें किस तरह की भावनाओं को समझना चाहिए। तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि असल में परेशानी क्या है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न ये कि अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ, दूसरा कि ये भावना कब से है, तीसरा कि क्या कोई घटना इसके पीछे है, चौथा कि क्या मैं किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, पांचवा ये कि इस समय मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: आराम, बातचीत, थोड़ा अकेला समय या किसी भरोसेमंद व्यक्ति का साथ। श्रोताओं, इन सवालों के जवाब तुरंत मिले ही जरूरी नहीं, लेकिन खुद से सवाल पूछना ही आत्मसमझ की शुरुआत है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों के लिए भावनाओं की डायरी बनाना मददगार हो सकता है। जैसे कि युवा साथियों, अपनी भावनाओं को समझने का एक सरल तरीका होता है उन्हें लिखना। हर दिन कुछ मिनट निकाल कर आप लिखिए, जैसे कि आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात से हुई, आज मुझे किस बात ने बहुत ज्यादा परेशान किया, किस परिस्थिति में मुझे गुस्सा आया और आज मैंने अपने बारे में क्या सीखा, और कल क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ। इससे जागृति जी धीरे धीरे हमारे अंदर भावनात्मक पैटर्न दिखाई देने लगता है। साथियों, हो सकता है कि आपको पता चले कि जब आप बहुत थके होते हैं तो छोटी बातें भी ज्यादा परेशान करती हैं।
0: बिल्कुल,
1: या जब आप किसी बात को मन में रखते हैं तो आप में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। जागृति जी, जब हमें पैटर्न समझ में आने लगते हैं तब उन्हें बेहतर तरीके से संभालना भी हमारे लिए आसान हो जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि भावनाओं को समझना जितना जरूरी है उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, अगर किसी के व्यवहार से आपको बुरा लगा है तो सीधे आरोप लगाने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि जब ऐसा हुआ तो मुझे बुरा लगा, मैं चाहती हूँ कि हम इस बारे में बात करें।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह बातचीत में आरोप कम होते हैं और अपनी भावना स्पष्ट होती है। याद रखिए श्रोताओं कि अपनी बात कहना और सामने वाले को दोष देना दोनों अलग चीजें होती है।
1: जी जी।
0: अपनी भावनाओं को सम्मान पूर्वक व्यक्त करना रिश्तों में समझ और विश्वास बढ़ा सकता है।
1: जी जी।
0: आज हम देखते हैं कशिश की सोशल मीडिया के दौर में तुलना करना बहुत आसान हो गया है। किसी की सफलता दिखाई देती है, किसी की नई नौकरी दिखाई देती है, किसी की उपलब्धि दिखाई देती है, किसी की खुशहाल तस्वीर दिखाई देती है और हम अपने जीवन को उससे तुलना करने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: फिर मन में सवाल आता है कि मैं पीछे क्यों हूँ, लेकिन हमें याद रखना होगा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीर किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी नहीं होती है।
1: जी जी।
0: हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी गति और अपनी चुनौतियां होती है। इसीलिए जब तुलना के कारण मन खराब हो तो खुद से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में पीछे हूँ या केवल किसी और की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना कर रहा हूँ।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि युवा साथियों, अगर आज आप परेशान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा परेशान रहने वाले हैं। अगर आज आप असफल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल इंसान बन रहे हैं। अगर आज आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है साथियों कि आप कमजोर हैं। आपसे कहना चाहेंगे कि भावना एक अनुभव है, आपकी पूरी पहचान नहीं। इसलिए ये कहने के बजाय कि मैं बहुत कमजोर हूँ, हम ये कह सकते हैं जागृति जी कि अभी मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा समय चाहिए।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये छोटा सा बदलाव हमारे सोचने के तरीके में बड़ा अंतर ला सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि भावनात्मक संतुलन का अर्थ ये नहीं है कि इंसान कभी दुखी या गुस्सा न हो। इसका अर्थ ये है कि अलग अलग भावनाओं के बीच भी हम खुद को

0: बचने और संभालने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ छोटी छोटी आदतें हमें अपनानी होगी, जैसे कि हमें खुद के लिए समय निकालना होगा, अपनी भावनाओं का नाम लेना होगा कि मैं परेशान हूँ, मैं निराश हूँ, मैं उत्साहित हूँ। भावनाओं को नाम देना उसे समझने में मदद करता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने से जरूर बचे श्रोता साथियों। गुस्से या दुख में लिया गया निर्णय हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है।
1: जी जी।
0: साथ ही भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। मन में सब कुछ जमा करके रखना जरूरी नहीं है। परिवार के किसी सदस्य, शिक्षक या भरोसेमंद व्यक्ति से बात की जा सकती है। इसी के साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, नियमित भोजन करें, शारीरिक गतिविधि और आराम हमारे मन और भावनात्मक स्थिति पर असर डालते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें भावनात्मक संतुलन हमारे मन में विकसित करती है।
1: जी हाँ जागृति जी, युवा साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल ये जानना जरूरी नहीं होता है कि हमें क्या करना है, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि हमारे भीतर आखिर चल क्या रहा है। कई बार करियर का फैसला केवल इसलिए गलत हो जाता है जागृति जी, क्योंकि हमारे युवा साथियों को लगता है कि वे अपनी वास्तविक इच्छा नहीं समझ पाए हैं। कई रिश्ते श्रोता साथियों केवल इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि हमने अपनी भावनाएं सही ढंग से व्यक्त नहीं की हुई होती है।
0: बिल्कुल।
1: कई अवसर इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि डर को हमने अपनी क्षमता समझ लिया होता है। और कई बार हम खुद से ही दूर हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को समझने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद को समझना भूल जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसलिए सबसे पहले आप खुद से दोस्ती कीजिए, अपने मन की आवाज सुनिए, अपनी भावनाओं को पहचानिए, जहाँ गलती हो उसे स्वीकार कीजिए साथियों, जहाँ मदद की जरूरत है वहाँ मदद मांगने से मत झिझकिए, और सबसे जरूरी अपने मन की हर भावनाओं को सम्मान दीजिए, लेकिन हर भावना के आधार पर तुरंत निर्णय मत लीजिए।
0: बिल्कुल। तो यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारे श्रोता साथियों को हम, कि आज की बातचीत से एक बात जरूर अपने साथ लेकर जाएं श्रोताओं, कि खुद को समझना खुद को बदलने से पहले का सबसे जरूरी कदम है।
1: हाँ।
0: जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हमें अपनी जरूरतें समझ में आती है। जब जरूरतें समझ में आती है कशिश, तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। और जब निर्णय बेहतर होते हैं तो हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं, और जब रिश्ते और निर्णय बेहतर होते हैं तो जीवन को एक नई दिशा मिलती है। इसीलिए अगली बार जब मन में कोई भावना उठी श्रोताओं, तो उसे तुरंत दबाने या उससे भागने की कोशिश मत कीजिए। कुछ पल रुकिए और खुद से पूछिए कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, और इस समय मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए। याद रखिए, अपनी भावनाओं को समझना खुद के प्रति सम्मान की पहली सीढ़ी है। अपने मन को सुनिए, खुद को समझिए और अपनी जिंदगी को अपनी समझ के साथ आगे बढ़ाइए। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा भी लेना चाहेंगे, क्योंकि बातें बहुत सारी हो चुकी है।
1: जी हाँ।
0: तो जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी खुद को समझते रहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, पर्यावरण बचाने की शुरुआत हमारे घर से हम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अंजलि, धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। ये विचार हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार, संस्थाओं या बड़े अभियानों की जिम्मेदारी नहीं है, इसकी शुरुआत हमारे अपने घर से होनी चाहिए। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं, जिस मिट्टी से हम अन्न प्राप्त करते हैं और जिन पेड़ पौधों की छाया में जीवन बिताते हैं, वे सभी प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण कोई दूर की बात नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले अंजलि हमने विषय से अवगत करवाया था और बातचीत भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण बचाने की शुरुआत हमें हमारे घर से करनी होगी।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज विकास की तेज गति ने मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक तो बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ गया है। बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कमी, जल संकट, प्लास्टिक कचरा, बढ़ती गर्मी और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हमें चेतावनी दे रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम अक्सर इन समस्याओं का समाधान बड़े स्तर पर खोजते हैं, जबकि परिवर्तन की पहली सीढ़ी हमारे घर के दरवाजे से शुरू होती है। श्रोता साथियों, बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। यदि घर में पानी को व्यर्थ बहने से रोका जाता है, बिजली का सही उपयोग किया जाता है, कचरा अलग रखा जाता है और पौधों की देखभाल की जाती है, तो बच्चे भी इन आदतों को सहज रूप से अपनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस तरह एक घर केवल अपना व्यवहार नहीं बदलता, बल्कि आने वाली पीढ़ी की सोच भी बदल देता है। क्योंकि जागृति जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें किसी बड़े अभियान का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव ही सबसे प्रभावी कदम बन सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, जल जीवन का आधार है, फिर भी कई घरों में नल खुला छोड़ देना, आवश्यकता से अधिक पानी बहाना या पानी के रिसाव को नजरअंदाज करना सामान्य बात समझी जाती है। अगर हम सच में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना चाहते हैं, तो पानी का हमें सम्मान करना होगा, नल का अनावश्यक उपयोग रोकना होगा, रिसते हुए नल को ठीक करवाना होगा, कपड़े और बर्तन धोते समय पानी की बर्बादी कम करनी होगी तथा वर्षा जल को सहेजने जैसे प्रयास घर से ही किए जा सकते हैं।
1: जी जी।
0: जब लाखों घर पानी बचाने लगेंगे, तब उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि बिजली की बचत को अक्सर केवल पैसे बचाने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन श्रोता साथियों, इसका संबंध पर्यावरण से भी है। आवश्यकता न होने पर पंखे, बल्ब और अन्य विद्युत उपकरण बंद करना एक छोटी सी आदत है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इससे ऊर्जा की बचत होती है। दिन में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करना, ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग करना और बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करना प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि बिजली की बचत केवल बिल कम करना नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी कम करती है।
0: बिल्कुल।
1: हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कचरे की समस्या का समाधान रसोई से होता है, क्योंकि जागृति जी, घर से निकलने वाला कचरा पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यदि गीले और सूखे कचरे को एक साथ

0: फेंक दिया जाए तो उसका उचित निपटान हो जाता है। इसलिए घर में ही कचरे को अलग अलग करना एक महत्वपूर्ण कदम है। सब्जी और फलों के छिलके जैसे जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है। कागज, धातु और अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को अलग रखा जा सकता है। इससे कचरे की मात्रा कम करने और उपयोगी सामग्री को दोबारा इस्तेमाल करने में मदद मिलती है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करें। श्रोताओं, प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसका ज्यादा और लापरवाही से किया गया उपयोग पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला साथ में रखकर बार बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को प्राथमिकता देना और अनावश्यक प्लास्टिक से बचना आसान कदम है। हमें ये सोच विकसित करनी होगी कि सुविधा के लिए इस्तेमाल की गई वस्तु हमारे पर्यावरण पर कितना बोझ डाल रही है। एक परिवार अगर प्लास्टिक का उपयोग कम करता है तो शायद बदलाव छोटा दिखाई दे, लेकिन यही आदत जब लाखों परिवार अपनाते हैं तो परिणाम बहुत बड़ा होता है। पेड़ केवल सुंदरता नहीं बढ़ाते श्रोताओं, बल्कि पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसलिए घर के आसपास पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना पर्यावरण संरक्षण का सुंदर तरीका है। पौधा लगाना पहला कदम है श्रोताओं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेना उससे भी महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे पौधों को प्राथमिकता देनी होगी जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। अंजलि, बच्चों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल से जोड़ना उनके भीतर प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी पैदा करता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को हम एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है कि पर्यावरण को बचाने की शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। श्रोता साथियों, पर्यावरण संरक्षण का संबंध हमारी थाली से भी है। भोजन तैयार करने में पानी, ऊर्जा, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। इसलिए भोजन को व्यर्थ फेंकना केवल अन्न की बर्बादी नहीं बल्कि अनेक संसाधनों की बर्बादी है। घर में आवश्यकता के अनुसार भोजन बनाना, बचा हुआ जो भोजन होता है उसका उचित तरीके से उपयोग करना और स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को महत्व देना पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार है।
1: बिल्कुल।
0: आज उपभोक्तावादी जीवन शैली में जागृति जी, हम कई वस्तुओं को थोड़ी सी खराबी के बाद फेंक देते हैं। हमें खरीदो और फेंको की आदत के स्थान पर मरम्मत करो और फिर उपयोग करो की सोच को विकसित करना होगा। क्योंकि श्रोता साथियों, पुराने कपड़ों का उपयोग दूसरे कामों में किया जा सकता है। बोतलों और डिब्बों का उपयोगी वस्तुओं के भंडार में किया जा सकता है। कई चीजों की मरम्मत करके उनकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। इससे कचरा कम होता है और प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी होती है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की मजबूत नींव बच्चों से रखी जा सकती है। बच्चों को केवल किताबों में पर्यावरण के बारे में पढ़ाने के बजाय उन्हें व्यवहार में भी शामिल करना होगा। घर में पौधों की जिम्मेदारी देनी होगी, पानी बचाने की आदत सिखानी होगी, कचरे अलग करवाना सिखाना होगा, बिजली के अनावश्यक उपयोग को रोकना होगा। साथ ही ये सारी चीजें उनके व्यवहार पर भी असर करती हैं। बच्चे जब स्वयं पर्यावरण मित्र आदत अपनाएंगे तो वे अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि घर एक छोटे पर्यावरण विद्यालय की भूमिका निभा सकता है।
0: बिल्कुल श्रोता साथियों, पर्यावरण संरक्षण तब अधिक प्रभावी होता है जब पूरा परिवार मिलकर प्रयास करे। परिवार महीने की शुरुआत में कुछ छोटे संकल्प ले सकता है। पानी की बर्बादी नहीं करेंगे, बिजली व्यर्थ नहीं चलाएंगे, कचरा अलग करेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और पौधे की देखभाल करेंगे। इन संकल्पों को केवल कागज पर लिखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें दैनिक जीवन में उतारना जरूरी है। जब परिवार अपनी आदतों की नियमित समीक्षा करता है तो छोटे प्रयास धीरे धीरे स्थायी व्यवहार में बदल जाते हैं। श्रोता साथियों, एक घर की अच्छी आदत दूसरे घर को प्रेरित कर सकती है। यदि एक परिवार अपने घर के बाहर स्वच्छता रखता है, पौधे लगाता है और कचरे का सही प्रबंधन करता है तो पड़ोसी भी जागृति से उससे प्रेरणा ले सकता है। इसी तरह एक मोहल्ला, एक गांव और फिर पूरा समाज पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बन सकता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले के प्रयास से क्या होगा। इतिहास में बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू हुए हैं।
1: जी हाँ।
0: एक बूंद दूसरी बूंद से मिलकर जलधारा बनती है और एक छोटा पौधा समय के साथ विशाल वृक्ष बन सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आधुनिक तकनीक पर्यावरण संरक्षण में हमारी मदद कर सकती है। बिजली और पानी की खपत पर नजर रखने वाले उपकरण, ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से कागज की बचत और पर्यावरण संबंधी जानकारी साझा करना इसके उदाहरण है। लेकिन श्रोता, तकनीक का उपयोग भी जिम्मेदारी से करना होगा। पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सामान्य कचरे में फेंकने के बजाय उनके उचित निपटान की व्यवस्था करनी होगी। हम पर्यावरण दिवस या किसी विशेष अवसर पर पौधे लगाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं और पर्यावरण बचाने के संदेश देते हैं। ये प्रयास महत्वपूर्ण है श्रोताओं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं हो सकता। वास्तविक बदलाव तब आएगा अंजलि, जब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी हमारी रोजमर्रा की आदत बन जाएगी। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, वैसे ही प्रतिदिन प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल अपने निर्णय स्वयं लेने का नाम नहीं है बल्कि अपने संसाधनों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग होना भी है।
1: बिल्कुल।
0: जब कोई परिवार पानी को बचाता है, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करता है, स्थानीय संसाधनों का सम्मान करता है और कचरे को कम करता है तो वह अपने स्तर पर आत्मनिर्भर और जिम्मेदार जीवन की ओर बढ़ता है। इसी दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन, समाज और भविष्य के स्वराज से भी जुड़ा हुआ है। प्रकृति पर निर्भर रहते हुए प्रकृति का सम्मान करना ही समझदार समाज की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसी बहुत बड़े बदलाव की प्रतीक्षा नहीं करनी है। शुरुआत हम आज से भी कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं और अपने घर से भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक नल बंद करना, एक पौधा लगाना, एक प्लास्टिक की थैली से बचना, एक बल्ब अनावश्यक रूप से बंद करना और एक मुट्ठी कचरा सही जगह डालना, ये छोटे छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन की नींव है। हमें याद रखना होगा श्रोताओं की आने वाली पीढ़ियां हमसे ये नहीं पूछेंगी कि हमने पर्यावरण पर कितने भाषण दिए थे, बल्कि ये पूछेंगे कि हमने उनके लिए कैसी धरती छोड़ी थी। इसलिए आज जरूरत है कि हर घर एक छोटा सा संकल्प हो, प्रकृति केवल हमारे उपयोग की वस्तु नहीं, हमारे जीवन का आधार है। हम इसे बचाएंगे, संवारेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाएंगे, क्योंकि पर्यावरण बचाने की शुरुआत किसी दूर के जंगल से नहीं, हमारे अपने घर से होती है। और जब हर घर बदलेगा तभी धरती का भविष्य बदलेगा।
0: तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत रही है, और अब हम देख रहे हैं कि समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को क्यों ना हम एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि जब हम एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज की बात करते हैं तो इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
1: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बताया कि महिला समानता दिवस क्यों मनाया जाता है और ये क्यों जरूरी है मनाना, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को समान अधिकार मिलने के बावजूद भी उन्हें किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
0: ये तो बात सही है बिल्कुल, कि ठीक है महिला को समानता मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ता है। जैसे गांव और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अगर अपन देखें तो कानूनी रूप से उनको समान अधिकार मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, संपत्ति पर अधिकार और सबसे बड़ी चीज जो है निर्णय लेने में भागीदारी,
1: बिल्कुल
0: ये इस तरह की चुनौतियां हैं जिसके कारण महिलाओं को बहुत बड़े नुकसान, हमारे समाज को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इसको देखें तो सामाजिक सोच, घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ और आर्थिक निर्भरता भी उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। इसलिए जरूरत है कि महिलाओं को केवल अधिकारों की जानकारी नहीं बल्कि उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए हम अवसर प्रदान करें, संसाधन उपलब्ध करवाएं और परिवार व समाज का उनको सहयोग मिले ये सुनिश्चित करें।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकार तो हमारे संविधान में लिखे गए हैं हमारे लिए, लेकिन उन अधिकारों की जानकारी न होने के कारण बहुत सी बार महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर उन अधिकारों के बारे में महिलाएं जागरूक होंगी तो इन सारी चीजों से वो कुछ हद तक बच सकती हैं, और इसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। तो मेरा अगला सवाल है कि शिक्षा महिला समानता की दिशा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अगर किसी परिवार में बेटा और बेटी की पढ़ाई को लेकर कुछ भेदभाव किए जा रहे हैं तो उस परिवार को क्या समझना होगा।
0: बिल्कुल, शिक्षा जो है उसको मैं ये कहूंगी कि अगर हम महिला समानता की बात करते हैं तो शिक्षा उसकी नींव है, बहुत ही मजबूत नींव के रूप में देख सकते हैं हम इसको, क्योंकि शिक्षा से ही लड़कियों को आत्मविश्वास मिलता है, अपने अधिकारों की समझ और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है वो, और इससे ही वे अपने जीवन और भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय ले पाती है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर परिवार में हम देखें कि बेटी और बेटे की पढ़ाई में भेदभाव होता है तो उसे समझना चाहिए कि शिक्षा दोनों का समान अधिकार है, किसी एक की प्राथमिकता नहीं है। बेटी को शिक्षित करना केवल उसके भविष्य में निवेश नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के बेहतर भविष्य में निवेश करना होता है।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी के समय में तो बदलाव हम देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी बेटियां जो हैं वो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं और बेटों को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो उन सारे जो व्यक्ति हैं, जो परिवार के लोग हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा कि बेटी को भी पढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना हम एक बेटे को पढ़ाते हैं। वहीं अब बात आती है कि घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर अक्सर समाज और सभी जो लोग हैं वो यही सोच रखते हैं कि ये तो महिला की जिम्मेदारी है। तो क्या पुरुष और महिलाओं के बीच घरेलू जिम्मेदारी का समान बंटवारा होना भी महिला समानता का हिस्सा है?
0: बिल्कुल, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं अंजलि, कि आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी है ना, रोजगार से जुड़ने लगी है ना, और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में भी देखें तो महिला खेत में जाती है, खेती का काम करती है। तो जब महिला बाहर की दुनिया में इतना कुछ कर रही है तो फिर उसे घरेलू काम जो होते हैं, घरेलू जिम्मेदारियां जो होती है उसमें उसे अकेले काम क्यों करना पड़ता है? ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल है कि घर का काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की जिम्मेदारी ये केवल महिलाओं की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो जब पुरुष और महिलाएं मिलकर घरेलू काम बांटते हैं ना तो महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, आराम करने का समय भी मिलता है और अपने विकास के लिए भी समय मिल पाता है, और यही वास्तविक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। इसी तरह हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता के लिए बहुत जरूरी है। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि ग्रामीण महिलाएं छोटे स्तर से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत कैसे कर सकती हैं।
0: देखो ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें तो गांव में एक सबसे बड़ी चीज होती है स्वयं सहायता समूह। तो महिलाएं अगर स्वयं सहायता समूह से जुड़ेंगी, खाली जुड़ना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह से जो आर्थिक मदद उनको मिल रही है उसका भरपूर उपयोग वो खुद कर सके, खुद निर्णय ले सके उस पैसे को खर्च करने का।
1: बिल्कुल।
0: या छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती है। अपन आदिवासी क्षेत्र में इसको खेती और पशुपालन से भी जोड़ के देख सकते हैं कि महिलाएं घर में पशुपालन को बढ़ावा दे, खेती से जुड़े जो जिस तरह से हम सच्ची खेती की बात करते हैं तो सच्ची खेती की चीजों को सीख के और उनको अपने खेतों में अपनाएं, या फिर कोई स्थानीय उत्पाद हो सकते हैं, हस्तशिल्प की कोई चीजें हो सकती है, उनसे अपने छोटे छोटे निवेश करें और व्यवसाय की अगर शुरुआत करें तो शुरुआत जो होती है ना अंजलि वो हमेशा छोटी होती है, लेकिन अपनी आय और उसका जब निर्णय लेने का अधिकार महिला का खुद का होगा तो एक आर्थिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकेगी।
1: बिल्कुल मैम आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं को अपने अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी न होने के कारण कई बार अपने हक से वंचित रहना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं जानकारी कहां से प्राप्त करें और किन किन संस्थानों के माध्यम से वो मदद ले सकती हैं?
0: देखो महिलाओं को ये तो है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाना पड़ता है, उनको पता नहीं होता है, जानकारी का अभाव होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, नियमित रूप से वो ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, यहाँ पे लोगों से मिलती रहे। स्वयं सहायता समूह में भी अगर वो मिलेगी तो वहाँ पे भी उसकी जानकारी बढ़ेगी।
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा गांव स्तर पे या ग्राम पंचायत स्तर पे महिला एवं बाल विकास विभाग है, वहां पर भी संपर्क कर सकती है। और इसके अलावा हमारा सामुदायिक रेडियो सबसे बड़ा माध्यम है इसके लिए, तो अगर वो लगातार हमारा सामुदायिक रेडियो भी सुनती रहेगी ना तो उससे भी उसकी जानकारी बहुत बढ़ेगी।
1: बिल्कुल।
0: और इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि महिलाएं खुद आगे बढ़े, जानकारी प्राप्त करें, सवाल पूछे, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। जब तक वो खुल के अपनी बात कहेगी नहीं, अपनी समस्या रखेगी नहीं, तब तक उसको समाधान मिलने के मौके कम ही मिल पाएंगे।
1: बिल्कुल मैम आपने सही कहा। तो जैसा कि आज महिला समानता को लेकर हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी महिला के साथ घर, कार्यस्थल, समाज में भेदभाव किया जा रहा है तो उसे चुप रहने के बजाय क्या कदम उठाने चाहिए और परिवार और समुदाय उसकी मदद कैसे कर सकता है?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अंजलि ये, क्योंकि कई बार महिलाएं समझ रही होती है कि उनके साथ गलत हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: उसके बावजूद भी वो चुप रहना चाहती है, उसके बावजूद भी वो चुप रहती है, चुप रह के सहती है। ये सही नहीं है, ये गलत है।
1: बिल्कुल।
0: चुप रहने की बजाय उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति या परिवार या ग्राम पंचायत स्तर पे या महिला समूह या संबंधित विभाग से मदद लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अगर जरूरत पड़ने पर उसको उपलब्ध कानूनी सहायता और शिकायत व्यवस्था का सहारा लेने की जरूरत पड़े ना तो वो भी लेना चाहिए उसको। और परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे महिला को दोष देने या चुप कराने के बजाय उसकी बात को सुने, उसका साथ दे और उसके लिए एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाए।
1: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि किस तरीके से महिलाओं को अगर ऐसी कुछ चीजें लगती हैं तो उन्हें चुप नहीं रहना है, क्योंकि एक बार हमने गलत चीज को सहन करना शुरू कर लिया तो वो फिर हमारी आदत बन जाती है और यह आदत जो है वो आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए समय रहते अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और ऐसी जो चीजें होती हैं उसे हमें लड़ने की जरूरत है, चुप नहीं रहना है। इसी के साथ अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे वागड़ क्षेत्र की महिला, पुरुष और जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे इन सारी चीजों में बदलाव आए और अधिक से अधिक जो महिलाएं हैं उनको लेकर जो समानता की हम बात करते हैं उसको लेकर लोग जागरूक हो?
0: मैं वागड़ क्षेत्र के सभी परिवारों से यही संदेश देना चाहूंगी कि बेटी और बेटे में कोई भेदभाव ना करें। बेटियों को शिक्षा, रोजगार और अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने के समान अवसर दें।
1: बिल्कुल।
0: और घर की जिम्मेदारियों में भी बेटियों व महिलाओं का साथ दें। मेरा पुरुष साथियों से विशेष आग्रह है कि समानता की शुरुआत अपने घर से करें।
1: बिल्कुल।
0: जब परिवार बेटियों पर भरोसा करेगा और महिलाओं के निर्णयों का सम्मान करेगा तभी हमारा वागड़ सशक्त परिवारों और समान अवसरों वाला मजबूत समाज बन सकेगा।
1: बिल्कुल, तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप आज हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, आपने मुझे ये विशेष अवसर दिया जहाँ पे मैं हमारी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के लिए कुछ बोल सकी और अपनी बात रख सकी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वागड़ क्षेत्र की हर महिला और हर पुरुष तक हमारा ये संदेश पहुँच सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माइंड बोनो अवडे आपणे व्यास में मधुबन जुड़े तक हता ने एणे आपणे घणी असल तरीका तकी घणा कानी वाते बताडी है कि महिला समानता दिवस मनाबो केम जरूरी है ने हर ते सबने अणा वारा में विचार करवो जोईए ने सोरा ने सूर्य ने वेश में समानता होवी जोईए। तो आशा कर हूं कि आ हंगरी वाते आपने गमी होंगा क्योंकि वे टाइम थी गयो है आपणे अणस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा पण साथे पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहां हम बात करते हैं उन सपनों की जो आंखों से पलते हैं, दिल में जगह बनाते हैं और सही दिशा मिलने पर जिंदगी की पहचान बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर परिवार की अपनी एक पहचान होती है। कोई पीढ़ियों से खेती करता आया है, किसी के घर में पशुपालन

परंपरा है तो कोई हस्तशिल्प बनाता है, तो कोई कपड़े सिलता है, तो कोई दुकान चलाता है, तो किसी परिवार की पहचान किसी खास हुनर से होती है। जी हाँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने यही काम करके परिवार चलाया, तुम भी इसे आगे बढ़ाओ। और नई पीढ़ी कहती है कि हम इस काम को करना चाहते हैं लेकिन अपने तरीके से। यहीं से शुरू होती है एक दिलचस्प कहानी। जी हाँ, क्या पीढ़ियों के बीच टकराव है या बदलाव की शुरुआत? कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम इसी सवाल को समझेंगे, क्योंकि शायद असली सवाल यह नहीं है कि पुरानी पीढ़ी सही है या नई पीढ़ी। असली सवाल यह है कि क्या पुराने अनुभव और नए विचार एक साथ मिलकर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं? जी हाँ। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा फागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पुराने अनुभव और नए विचार एक साथ मिलकर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो श्रोता साथियों, मान लीजिए कि एक गाँव में मोहन का परिवार कई पीढ़ियों से खेती करता आया है। मोहन के दादा खेती करते थे, उसके पिता भी खेती करते हैं। घर की जमीन, बेल, ट्रैक्टर, बीज, मंडी, इन सब की बातें मोहन ने बचपन से सुनी है। लेकिन मोहन पढ़ाई पूरी करने के बाद कहता है कि बाबा, मैं खेती छोड़ना नहीं चाहता, मैं खेती को बदलना चाहता हूँ। तो पिता चौंक कर पूछते हैं, बदलना क्या है, खेती तो खेती है, हमारे बाप दादा भी यही करते आए थे। फिर मोहन कहता है कि बाबा, पहले हम सिर्फ फसल उगाते थे, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी उपज को सीधे बाजार तक पहुँचाएं, खेत में नई तकनीक इस्तेमाल करें, पानी की बचत करें, सब्जियों की अलग अलग फसल लें और जो पैदा हो उसे साफ करके पैक करके बेचें। पिता कहते हैं कि इतने साल से हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, इसमें नया क्या है। फिर मुस्कुराकर मोहन बोलता है, दोस्तों कि नया काम नहीं बाबा, उसी काम को नए तरीके से करने की कोशिश है। दोस्तों, यही अंतर जिसे समझना जरूरी है। नई पीढ़ी हमेशा पुराना काम छोड़ना नहीं चाहती, कई बार वह चाहती है साथियों कि पुराने काम को नए समय के अनुसार बदला जाए। जी हाँ, तो श्रोता साथियों, आखिरकार ये टकराव पैदा क्यों होता है, तो बताना चाहूंगी कि परिवार में जब कोई युवा अपने पारंपरिक काम को लेकर नया विचार रखता है तो सबसे पहली समस्या होती है सोच का अंतर। जी हाँ, बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी अनुभवों के आधार पर बनाई है, उन्होंने मुश्किल समय देखा है, कम संसाधनों में परिवार चलाया है, जो रास्ता सुरक्षित लगा उसे अपनाया। वहीं नई पीढ़ी ने दुनिया को अलग तरीके से देखा है, उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, नई तकनीक है, नई जानकारी है और दूसरे राज्यों और देशों के लोगों के काम देखने का अवसर है, इसलिए उनका नजरिया स्वाभाविक रूप से अलग होगा। बुजुर्ग कह सकते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, युवा कह सकता है लेकिन आज समय बदल गया है। दोस्तों, दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं, समस्या तब पैदा होती है जब एक पक्ष दूसरे को सुनना ही बंद कर देता है। जी हाँ श्रोता साथियों, परंपरा सिर्फ पुराना काम नहीं है, हमें ये समझना होगा कि परंपरा का मतलब केवल वही काम करते रहना नहीं है जो पहले किया जाता था। परंपरा का अर्थ है पीढ़ियों से मिली सीख, अनुभव और ज्ञान को संभाल कर आगे बढ़ना। जी हाँ, अगर परिवार खेती करता आया है तो उसके पास मिट्टी को समझने का अनुभव है, उसे मौसम के बदलाव की पहचान हो सकती है, उसे स्थानीय बीजों की जानकारी हो सकती है, उसे पशुपालन का अनुभव भी हो सकता है साथियों, इसी के साथ उसे स्थानीय बाजार की समझ हो सकती है। नई पीढ़ी के पास दूसरी तरह की ताकत है, उसे डिजिटल बाजार की जानकारी हो सकती है, वह सोशल मीडिया का उपयोग कर सकती है, ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकती है, नई मशीनों और तकनीकों के बारे में जान सकती है, उत्पाद की पैकेजिंग और ब्रांडिंग समझ सकती है। तो दोस्तों, अब जरा सोचिएगा कि अगर दोनों ताकतें एक साथ आ जाए तो क्या होगा। एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ नहीं सोच, एक तरफ परंपरा तो दूसरी तरफ तकनीक, एक तरफ जमीन से जुड़ा ज्ञान, दूसरी तरफ बाजार की नई समझ, यही मिलकर बदलाव पैदा कर सकता है। तो जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर हमारी आपसे बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों अब जानना चाहेंगे कि नई पीढ़ी के सपनों को केवल जिद नहीं समझना है। जी हाँ, कई बार युवा जब परिवार के पारंपरिक काम में कुछ नया करने की बात करता है तो उसे तुरंत कह दिया जाता है, तुम्हें क्या पता है, हमने जिंदगी लगा दी इस काम में, नई नई बातें मत करो, तुम अभी बच्चे हो। लेकिन दोस्तों, हर नया विचार सिद्ध नहीं होता। कभी कभी वह उस युवा के भीतर छिपे सपनों की आवाज होती है। हो सकता है वह परिवार के काम को छोड़ना नहीं चाहता, हो सकता है कि वह उसे आगे ले जाना चाहता हो सकता है कि वह कह रहा हो, पिताजी आपने जो बनाया है मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता, मैं उसे और मजबूत बनाना चाहता हूँ। यह बात सुनने और समझने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी केवल युवाओं की तरफ से नहीं है, नई पीढ़ी को भी समझना होगा कि नया विचार होना और सही विचार होना एक ही बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज इंटरनेट पर सफल हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे गांव या परिवार में भी उसी तरह सफल होगी। इसलिए युवा जब कोई नया विचार लेकर आए तो उसे केवल यह नहीं कहना चाहिए कि आप पुराने जमाने के हैं, बल्कि कहना चाहिए कि आइए इसे समझते हैं, थोड़ा करके देखते हैं, अगर फायदा हुआ तो आगे बढ़ाएंगे। यानी विरोध नहीं प्रयोग, बहस नहीं बातचीत, जिद नहीं योजना। जी हाँ दोस्तों, बदलाव का मतलब सब कुछ बदल देना नहीं होता है। बदलाव का मतलब यह नहीं कि पुरानी हर चीज गलत है। आधुनिकता का मतलब भी नहीं कि नई हर चीज सही है। हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर परिवार पारंपरिक तरीके से खेती करता है तो नई पीढ़ी मिट्टी की जांच, बेहतर सिंचाई तकनीक, मौसम की जानकारी और बाजार की मांग के अनुसार फसल का चयन जैसी चीजें जोड़ सकती हैं। अगर परिवार हस्तशिल्प का काम करता है तो युवा उसकी डिजाइन को आधुनिक रूप दे सकता है, उसकी तस्वीरें डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है और नए बाजार तलाश सकता है। जी हाँ, अगर परिवार की छोटी दुकान है तो युवा डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन प्रचार और सामान की बेहतर व्यवस्था जोड़ सकता है। अगर परिवार पशुपालन करता है तो युवा पशु स्वास्थ्य, पोषण, नस्ल सुधार और बाजार की नई जानकारी का उपयोग कर सकता है। यानी कि काम वही हो सकता है लेकिन उसका तरीका बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों का अनुभव परिवार की ताकत है, लेकिन कभी कभी बुजुर्गों के साथ एक डर भी जुड़ जाता है। अगर नया तरीका असफल हो गया तो यह डर दोस्तों स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक मेहनत करके परिवार को संभाला हो, वह जोखिम लेने से डर सकता है। ऐसे में युवा को यह नहीं कहना चाहिए कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता, बल्कि कहना चाहिए आपका अनुभव मेरे साथ है, इसलिए मैं यह कोशिश करना चाहता हूँ। यह वाक्य पीढ़ियों के बीच दूरी कम कर सकता है। श्रोता साथियों, अगर युवा अपना सपना छिपा कर रखेंगे तो परिवार उसे समझ ही नहीं पाएगा। अगर माता पिता बिना सुने फैसला कर देंगे तो युवा खुद को अकेला महसूस कर सकता है। इसलिए परिवार में बातचीत की जगह बननी चाहिए। एक दिन बैठकर पूछा जा सकता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, और युवा से भी पूछा जा सकता है कि तुम्हारे विचार के पीछे योजना क्या है। फिर मिलकर सवाल किए जा सकते हैं, जैसे कि इसमें कितना खर्चा आएगा, जोखिम कितना है, फायदा कितना हो सकता है, शुरुआत छोटे स्तर से कैसे हो सकती है, कौन सी चीज परिवार के पुराने अनुभव से मदद ले सकती है और कौन सी नई जानकारी सीखनी होगी। जब सपना भावना से निकलकर योजना बन जाता है तब उसे समझना आसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि परिवार की परंपरा सम्मान के योग्य है, क्योंकि हर बच्चे का भविष्य पहले से तय नहीं किया जा सकता। किसी किसान का बच्चा किसान बने जरूरी नहीं, किसी दुकानदार का बच्चा दुकानदार बने जरूरी नहीं, किसी कारीगर का बच्चा उसी काम को करे यह भी जरूरी नहीं। हर व्यक्ति की अपनी रुचि, क्षमता और सपना होता है। किसी को शिक्षक बनना है तो किसी को कलाकार, किसी को उद्यमी बनना है तो किसी को सरकारी सेवा में जाना है, किसी को तकनीकी क्षेत्र में जाना है। श्रोता साथियों, परिवार की परंपरा दिशा दे सकती है लेकिन जिंदगी का पूरा नक्शा नहीं बना सकती।
और अगर युवा पारंपरिक काम से अलग रास्ता चुनता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह परिवार या परंपरा का सम्मान नहीं करता। सम्मान दिल में हो सकता है भले ही पेशा अलग हो। इसलिए दोस्तों जब उसे सिर्फ मैं यह करूंगा कहने के बजाय ये दिखाना होगा कि वह इसे किस तरह बेहतर करेगा। मान लीजिए कि परिवार मिट्टी के बर्तन बनाता है, पुरानी पीढ़ी कहती है कि इसे क्या कमाई होगी। युवा कहता है कि हम सिर्फ पारंपरिक घड़े नहीं बनाएंगे, हम आधुनिक डिजाइन की मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, उन्हें सजाएंगे, स्थानीय बाजार के साथ साथ दूसरे शहरों तक पहुँचाएंगे। अब वही पारंपरिक काम एक नया अवसर

में बदल सकता है, यानी कि परंपरा को छोड़ना ही बदलाव नहीं, परंपरा में नई संभावनाएं खोजना भी बदलाव है। तो श्रोता साथियों, आज अपने घर में एक सवाल जरूर पूछिए, हमारे परिवार के पारंपरिक काम में ऐसा क्या है जिसे नई सोच के साथ और बेहतर बनाया जा सकता है। और युवाओं से एक सवाल कि क्या आपने सपनों को सिर्फ सपना मान रखा है या उसे पूरा करने के लिए ज्ञान, योजना और मेहनत भी जुटा रखी है, क्योंकि सपनों की उड़ान सिर्फ आसमान देखने से नहीं होती, उड़ान तब होती है जब अनुभव हमारे पंख बने, नई सोच हमारी दिशा बने और मेहनत हमें मंजिल तक ले जाए। परंपरा और परिवर्तन एक दूसरे के दुश्मन नहीं, जरूरत सिर्फ इतनी है कि पुरानी पीढ़ी अपने अनुभव का साथ आगे बढ़ाए और नई पीढ़ी अपनी नई सोच का हाथ थामे। शायद इस मिलन से वह भविष्य बनेगा जिसका सपना दोनों पीढ़ियां देखती हैं, एक ऐसा भविष्य जिसमें जड़ों का सम्मान भी हो और नई उड़ान की आजादी भी। इसी सोच के साथ आज कार्यक्रम सपनों की उड़ान से हम विदा लेना चाहेंगे। कार्यक्रम में होने वाली बातचीत और गीत संगीत आपको अवश्य पसंद आए होंगे, ऐसी आशा मैं रखती हूँ। लेकिन जाने से पहले एक और प्यारे से गीत के साथ में आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, सपना तब बड़ा बनता है जब उसे पूरा करने की हिम्मत पीढ़ियों को छोड़ देती है। इन्हीं बातों के साथ आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बूंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बूंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बूंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बूंद आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बूंद आपड़े भाई बूंदो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: भाई ने बोलो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो।
0: एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हमरो गरीब बोले पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
3: तो हमरो बोनो, अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आयत की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मालूम में जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, बराबरी केवल अधिकारों में नहीं सम्मान और अवसर में भी होती है। जी हाँ, आज कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं महिला समानता दिवस, समान अधिकार और समान सम्मान को।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश कि पूरे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है ये विषय। और सवाल ये है कि क्या बेटी को भी बेटे के बराबर पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या महिला अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद ले सकती है? क्या घर और समाज में महिलाओं की मेहनत को उतना ही सम्मान मिलता है जितना पुरुषों की मेहनत को मिलता है?
0: बिल्कुल,
1: क्या महिला को अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यही महिला समानता की असली शुरुआत है। जी हाँ श्रोता साथियों, हर वर्ष आज के दिन यानी कि 26 अगस्त के दिन महिला समानता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार केवल कागज पर नहीं बल्कि परिवार, शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, निर्णय लेने और समाज के हर क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें?
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं महिला समानता दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि अंजलि जी, हम सभी जानते हैं कि महिला हमारे समाज की आधी आबादी है। परिवार की देखभाल से लेकर शिक्षा, रोजगार, कृषि, विज्ञान, राजनीति, खेल, प्रशासन और देश के विकास तक महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान मिले। और इसी विचार को मजबूत करने के लिए महिला समानता दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है। साथियों,
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि महिला समानता का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों को हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा बताया जाए। इसका वास्तविक अर्थ है कि दोनों को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिले। किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके महिला या पुरुष होने के कारण भेदभाव न हो और हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महिला समानता का मतलब पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। समानता का मतलब है महिला होने के कारण किसी को कमतर न समझा जाए, उसे शिक्षा का समान अवसर मिले, उसकी बात को महत्व दिया जाए, उसके काम का सम्मान किया जाए, उसे अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिले और उसके अधिकारों का सम्मान किया जाए। एक महिला बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, परिवार हो सकती है, माँ हो सकती है, किसान हो सकती है, मजदूर हो सकती है, शिक्षिका हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, उद्यमी हो सकती है या जनप्रतिनिधि हो सकती है। लेकिन इन सभी भूमिकाओं से पहले वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है जिससे अपने सपने, इच्छाएं, क्षमता और अधिकार है। इसलिए महिला समानता का मतलब है महिलाओं को उसके अस्तित्व और उसकी क्षमता के आधार पर सम्मान देना।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हम कशिश अक्सर सोचते हैं कि महिला समानता की जिम्मेदारी सरकार या समाज की है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन असली बदलाव की शुरुआत हमारे घर से होती है। जब घर में बेटा और बेटी दोनों को पढ़ने का अवसर मिलता है तब समानता की नींव रखी जाती है। जब बेटे से कहा जाता है कि वह घर के काम में माँ की मदद करे, बेटी से कहा जाता है कि वह भी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दे, तब बराबरी मजबूत होती है। जब घर की महत्वपूर्ण फैसलों में महिलाओं की राय पूछी जाती है तब उन्हें सम्मान मिलता है। जब बेटी से यह नहीं कहा जाता कि तुम तो घर दूसरे घर चली जाओगी, बल्कि यह कहा जाता है कि तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा भविष्य हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बेटे का, तब समाज बदलता है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ये नहीं सिखाना होगा कशिश कि घर का काम केवल महिलाओं का ही काम नहीं है, कमाई केवल पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है, बेटी केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार की ताकत है। ऐसी चीजें हमें बचपन से ही बच्चों को सिखानी होगी ताकि वे भी महिला के सम्मान के महत्व को समझ पाए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथियों, महिला किसी भी समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है। जिस प्रकार परिवार के निर्माण और विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में भी महिलाओं का योगदान जरूरी होता है। आज महिलाएं अंजलि जी शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, व्यवसाय, कला और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। फिर भी दुनिया के अनेक हिस्सों में साथियों महिलाओं को भेदभाव, असमान अवसर, अशिक्षा, हिंसा और सामाजिक रूढ़ियों का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: इन्हीं समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक करने और महिलाओं के समान अधिकारों की आवश्यकता को समझाने के लिए

0: महिला समानता दिवस का विशेष महत्व बताया गया है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि महिला समानता दिवस हमें यह संदेश देता है कि महिला और पुरुष दोनों समाज के समान रूप से महत्वपूर्ण अंग हैं। किसी व्यक्ति का अधिकार, सम्मान और अवसर उसके लिंग के आधार पर निर्धारित नहीं होना चाहिए।
1: जी जी,
0: महिलाओं को समान अवसर, समान अधिकार और सम्मान देना केवल महिलाओं के हित की बात नहीं है, बल्कि ये एक सभ्य, न्यायपूर्ण और विकसित समाज की भी पहचान है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि महिला समानता की बात हो, शिक्षा की बात न हो, ऐसा संभव नहीं है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों को बेहतर समझ सकती है, वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है, अपने बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर सकती है, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा सकती है। लेकिन कशिश, आज भी कई जगह बेटियों की पढ़ाई को लेकर सोच में अंतर दिखाई देता है। कभी आर्थिक परेशानी का कारण बताया जाता है, तो कभी घर के काम का बोझ, तो कभी सुरक्षा की चिंता, तो कभी यह सोच कि लड़की को आखिर पढ़ाकर क्या करना है। ऐसी सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि बेटी की शिक्षा पर किया गया खर्च केवल एक व्यक्ति की शिक्षा नहीं, यह पूरे परिवार और समाज के भविष्य में निवेश।
0: बिल्कुल,
1: बेटी पढ़ेगी तो अपने अधिकार समझेगी, अपने फैसले लेने का आत्मविश्वास पाएगी और अगली पीढ़ी को भी बेहतर दिशा दे पाएगी।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातें कर ही रहे हैं, ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा फागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे कि ग्रामीण और आदिवासी समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे ग्रामीण और वागड़ जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। यहाँ पर महिलाएं खेती में काम करती हैं, पशु की देखभाल करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, पानी और ईंधन की व्यवस्था में योगदान देती है, खाद्य सामग्री तैयार करने से लेकर खेती के कई कामों में सक्रिय रहती है।
1: बिल्कुल,
0: महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बचत करती हैं और छोटे छोटे व्यवसाय भी चलाती हैं। लेकिन श्रोता साथियों, सवाल यह है कि क्या उनके इस योगदान में हमेशा वह सम्मान और उन्हें वो पहचान मिलती है जिसके वे हकदार हैं? कई बार महिलाएं दिन भर काम करती हैं, लेकिन उसके काम को तो घर का ही काम है कहकर सामान्य मान लिया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हमें इस सोच को बदलना होगा। घर संभालना भी श्रोता साथियों काम है, बच्चों की देखभाल भी जिम्मेदारी है और खेत में मेहनत करना भी योगदान है।
1: जी हाँ,
0: पशुपालन भी आर्थिक गतिविधि है। महिलाओं के श्रम को पहचान और सम्मान देना भी महिलाओं का समानता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: जी जी,
0: इसके साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समानता केवल सम्मान की बात नहीं, आर्थिक निर्भरता भी महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार है।
1: बिल्कुल,
0: जब महिला के पास अपनी आय का साधन होता है कशिश, तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, वह परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे सकती है और अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकती है।
1: जी जी,
0: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कई तरीके के काम करती है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ना, सिलाई कढ़ाई करना, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, स्थानीय उत्पाद तैयार करना, छोटी दुकान या व्यवसाय, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला, कृषि आधारित छोटे उद्यम। जरूरत है श्रोता साथियों महिलाओं को प्रशिक्षण, बाजार की जानकारी, वित्तीय साक्षरता और निर्णय लेने का अवसर मिले।
1: बिल्कुल,
0: महिला की कमाई केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, इससे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं साथियों कि महिला समानता दिवस महिलाओं के अधिकारों और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने का एक अवसर है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाओं ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस प्रकार से लंबे समय तक संघर्ष किया था।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा प्राप्त करने, मतदान करने, रोजगार पाने, संपत्ति रखने और निर्णय लेने जैसे अनेक अधिकार ऐसे हैं साथियों जो महिलाओं को संघर्ष के बाद प्राप्त हुए हैं। ये दिवस समाज में मौजूद लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में जागरूकता पैदा करता है। इसका उद्देश्य ये समझना है कि बेटियों और बेटों में किस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
0: जी जी,
1: दोनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। अंजलि जी, हम देख सकते हैं कि महिला समानता का सबसे महत्वपूर्ण आधार समान अवसर है।
0: बिल्कुल,
1: प्रत्येक लड़की और महिला को अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। यदि किसी लड़की को केवल साथियों इसलिए शिक्षा से वंचित कर दिया जाए कि वह लड़की है, तो यह उसके साथ ही नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ अन्याय है।
0: जी जी,
1: बेटियों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सके।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में लड़कियों को लड़कों के समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं को योग्यता के आधार पर अवसर मिलने चाहिए और कार्यस्थल पर महिलाओं को अपनी क्षमता दिखाने के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण भी मिलना चाहिए। अंजलि जी,
0: जी हाँ कशिश, समानता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है निर्णय लेने का अधिकार। जी हाँ श्रोता साथियों, घर में जमीन खरीदनी है या बेचनी है, बच्चों की पढ़ाई का फैसला करना है, खेती के तरीके पर निर्णय लेना है, व्यवसाय शुरू करना है या परिवार की किसी बड़ी जरूरत पर पैसा खर्च करना है, इन सभी फैसलों में महिलाओं की राय भी महत्वपूर्ण है। कई बार महिला घर और परिवार की वास्तविक जरूरतों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय में उनकी राय नहीं ली जाती। हमें यह सोच बदलनी होगी कि जिस महिला का जीवन किसी निर्णय से प्रभावित होता है, उसकी राय उस निर्णय में जरूर होनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, सम्मान, सुरक्षा और कानून के संरक्षण का अधिकार है। साथ ही महिलाओं से जुड़े कई कानून और सरकारी योजनाएं उनके अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है श्रोता साथियों, जरूरी है कि महिला को अपने अधिकारों की जानकारी हो, परिवार और समाज भी उन अधिकारों का सम्मान करे। इसलिए सामुदायिक स्तर पर हमें जागरूकता बढ़ानी होगी।
1: बिल्कुल,
0: गाँव की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, ग्राम सभा में महिलाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए, पंचायत में भी इन सारी चीजों को लेकर बातचीत होनी चाहिए। महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाने का अवसर भी मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि समान अधिकार का मतलब यह नहीं है कि महिलाओं को पुरुष के अधिकार जो है वो सिर्फ संविधान में लिखे गए हैं इसलिए मिलने चाहिए। हमें भी अपने मन से इन सारी चीजों को सोचना चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों ही समान है। कई बार महिला के साथ भेदभाव केवल इसलिए नहीं होता कशिश कि उनकी उसे उनके अधिकारों की जो चीजें हैं वो नहीं दी गई है, बल्कि इसलिए भी होता है क्योंकि उनके बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अगर महिला अपनी परेशानी बताती है तो उसे चुप करा देना, उसकी राय को मजाक में टाल देना, उसके फैसलों को महत्व न देना, ये भी असमानता के रूप है। महिला की बात सुनना जरूरी है क्योंकि सम्मान का मतलब केवल अच्छे शब्द बोलना नहीं है। सम्मान का अर्थ है उसकी बात सुनना, उसकी राय को महत्व देना और उसके अधिकारों को स्वीकार करना।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथी अगर बात करें साथियों, तो समान अधिकार और अवसर तभी सार्थक होते हैं जब महिलाओं को समाज में सम्मान भी प्राप्त हो। महिला का सम्मान केवल विशेष अवसरों पर उसकी प्रशंसा करने से नहीं अंजलि जी,
0: बिल्कुल
1: उसके विचारों, निर्णय और स्वतंत्र अस्तित्व का सम्मान करने से होता है। साथियों में

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, महिला समानता दिवस को लेकर ढेर सारी बातें गीत से पहले भी चल रही थी, यही अगर बात करें श्रोता साथियों, तो महिला समानता की शुरुआत परिवार से होती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: यदि परिवार में बेटी और बेटी के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा तो समाज में भी समानता की भावना मजबूत होगी। साथियों, बेटियों को ये महसूस होना चाहिए कि वे परिवार पर बोझ नहीं बल्कि परिवार की शक्ति हैं।
1: बिल्कुल,
0: माता पिता को बेटियों को बेटों के समान शिक्षा और अवसर देना चाहिए। उन्हें खेल, विज्ञान, तकनीक, कला और अन्य क्षेत्रों में अपनी रुचि विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
1: जी जी।
0: साथ ही बेटों को भी ये सिखाया जाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करना उतना ही जरूरी है और उनकी जिम्मेदारी उठाना भी उतना ही जरूरी है। परिवार में निर्णय लेते समय महिलाओं की राय को महत्व देना भी समानता का एक हिस्सा है अंजलि जी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। घर के आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में भी महिलाओं की भागीदारी परिवार को अधिक मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल कशिश, हमारे समाज में बेटी को लेकर कई पुरानी धारणाएं आज भी दिखाई देती हैं। कहीं बेटी को परिवार का सहारा माना जाता है तो बेटी को बोझ, कहीं बेटी की शिक्षा पर अधिक खर्च किया जाता है तो बेटी की पढ़ाई जल्दी रोक दी जाती है।
0: बिल्कुल,
1: कहीं बेटे को अपने फैसले लेने की आजादी मिलती है लेकिन बेटी पर कई जगह की पाबंदियां लगा दी जाती है। हमें खुद से पूछना चाहिए श्रोता साथियों कि अगर बेटा परिवार का नाम रोशन कर सकता है तो बेटी क्यों नहीं।
0: बिल्कुल।
1: अगर बेटा माता पिता का सहारा बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं। अगर बेटा सपना देख सकता है तो बेटी को सपने देखने से क्यों रोका जाए। आज जरूरत है कि हम अपनी बेटियों से कहें कि तुम्हारे सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की एक बेटे के है।
0: बिल्कुल,
1: बेटों को भी सिखाना होगा कि समानता हमें किस तरीके से समझनी है। महिला समानता की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की नहीं है, हमें अपने बेटों को भी समानता का संस्कार देना होगा। उन्हें सिखाना होगा कि बहन का सम्मान करें, माँ के काम में उसकी मदद करें, घर के काम में सहयोग करें, महिलाओं के निर्णय का सम्मान करें, किसी लड़की का मजाक उसके लिंग के आधार पर न उड़ाएं, और यह भी समझे कि मजबूत पुरुष वही नहीं जो दूसरों पर अधिकार जमाए, बल्कि वह भी है जो दूसरों का सम्मान करना जानता है। कशिश, अगर हम बचपन से लड़कों लड़कियों दोनों को समानता का संस्कार देंगे
0: जी
1: तो आने वाली पीढ़ी अधिक संवेदनशील और समान समाज बनाएगी।
0: बिल्कुल,
1: हमारे ग्रामीण समाज में महिला कृषि की महत्वपूर्ण साथी है। बुवाई से लेकर निराई गुड़ाई तक, पशुपालन से लेकर खाद्य प्रसंस्करण तक महिलाएं अनेक काम करती हैं। फिर भी कई बार किसान के रूप में महिला की पहचान पर्याप्त रूप से सामने नहीं आती।
0: बिल्कुल,
1: जरूरत है कि महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण मिले, नई तकनीक की जानकारी मिले, बाजार से जोड़ा जाए और खेती से जुड़े निर्णय में उसकी भागीदारी बढ़े।
0: बिल्कुल,
1: जिस हाथ ने खेत में बीज बोया है उस हाथ की मेहनत को भी पहचान मिलनी चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण भी बहुत जरूरी है। जैसे कि महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन शिक्षा होती है अंजलि जी। शिक्षित महिला अपने अधिकारों को समझती है, सही और गलत में अंतर करना जानती है और अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। एक शिक्षित महिला अपने परिवार और समाज को भी शिक्षित और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हर लड़की के द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। केवल प्राथमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो या व्यावसायिक प्रशिक्षण हो, इन सभी चीजों के अवसर भी महिलाओं को उपलब्ध होने चाहिए अंजलि जी।
1: जी जी।
0: महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बहुत जरूरी है। जब महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है साथियों, तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
1: जी हाँ।
0: वो अपने जीवन से जुड़े निर्णय और अधिक स्वतंत्रता से ले पाती है। साथ ही अगर बात करें तो महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर भी मिलने चाहिए। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, बैंकिंग सुविधाओं और रोजगार के अवसरों से जोड़ना जरूरी है।
1: जी जी।
0: स्वयं सहायता समूह और छोटे व्यवसायों के माध्यम से अनेक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं अंजलि जी।
1: जी हाँ कशिश, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं जंगल, पानी, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बहुत गहराई से जुड़ी रहती हैं।
0: बिल्कुल।
1: स्थानीय पेड़ पौधों, खाद्य प्रथा बीजू और पारंपरिक ज्ञान की जानकारी रखती है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: जब महिलाओं की स्थानीय जानकारी और अनुभव को सम्मान दिया जाता है तो समुदाय के विकास को नई ताकत मिलती है।
0: जी हाँ।
1: समानता का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति बिल्कुल एक जैसा काम करे। समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिले। अगर एक लड़की खेलना चाहती है तो उसे खेल का अवसर मिले, अगर वह पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने का अवसर मिले, अगर वह खेती सीखना चाहती है तो उसे कृषि प्रशिक्षण मिले, अगर वह व्यवसाय करना चाहती है तो उसे व्यवसाय की जानकारी और अवसर मिले, अगर वह पंचायत में अपनी बात रखना चाहती है तो उसे बोलने दिया जाए। यही वास्तविक समानता है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि महिला समानता की शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। हमें पहला कदम उठाना है कि बेटियों और बेटों को समान शिक्षा दें।
0: बिल्कुल।
1: हमारा दूसरा कदम होना चाहिए कि घर के काम को केवल महिला की जिम्मेदारी न माने। तीसरा कदम होना चाहिए कि परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में महिलाओं की राय लें। चौथा कदम हमारा हो सकता है कि महिलाओं की मेहनत और कमाई का सम्मान करें।
0: बिल्कुल।
1: पांचवा कदम, बेटी को अपनी बात रखने का आत्मविश्वास दें। छठा कदम, महिलाओं को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: बिल्कुल।
1: सातवां कदम हो सकता है कशिश हमारा कि किसी भी प्रकार के भेदभाव या हिंसा को सामान्य माने। इस तरीके से हम परिवार के माध्यम से ही इन समानता की चीजों को आगे तक बढ़ा सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि समाज को भी अपनी भूमिका निभानी इसमें बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए हमें गाँव की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, महिला समूह को मजबूत करना होगा, बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना होगा, महिलाओं के काम को सम्मान देना होगा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को चुपचाप स्वीकार करने की बजाय उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी।
0: बिल्कुल अंजलि जी।
1: सबसे जरूरी कशिश कि महिला को केवल महिला के रूप में नहीं बल्कि एक सक्षम नागरिक के रूप में देखना होगा।
0: जी हाँ अंजलि जी। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं, ये बातें हमारी श्रोता साथियों से आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि महिला समानता दिवस हमें एक दिन के लिए महिलाओं को सम्मान देने की याद नहीं दिलाता। यह दिन हमें अपने व्यवहार पर विचार करने का अवसर देता है।
1: बिल्कुल।
0: क्या हम अपनी बेटी और बेटे से भेद करते हैं? क्या हम महिला के काम को कम समझते हैं? क्या हम महिलाओं को अपने फैसले लेने की आजादी देते हैं? क्या हम घर के काम को मिलकर करते हैं? क्या हम महिलाओं की बात सुनते हैं? अगर इन सवालों के जवाब में कहीं कमी दिखाई दे रही है श्रोता साथियों, तो बदलाव की शुरुआत आज से ही की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि समाज में बड़ा बदलाव हमेशा बड़े कदम से नहीं आता। कभी कभी बदलाव की शुरुआत होती है एक बेटे को स्कूल भेज देने से, एक महिला की बात सुन लेने से, घर के काम में हाथ बटाने से, महिला की मेहनत की सराहना करने से और उसके सपनों पर भरोसा करने से।
1: जी जी।
0: क्योंकि श्रोता साथियों, याद रखिए कि महिला को आगे बढ़ाने का मतलब पुरुष को पीछे करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि समाज की आधी आबादी को भी अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिले। जब महिला शिक्षित होगी तो परिवार मजबूत होगा, जब महिला सुरक्षित होगी तो समाज मजबूत होगा, जब महिला आर्थिक रूप से सक्षम होगी तो परिवार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जब महिला निर्णयों में भागीदार होगी लोकतंत्र मजबूत होगा, और जब महिला को सम्मान मिलेगा तब समाज में इंसानियत मजबूत होगी। इसलिए महिला समानता केवल महिलाओं का अधिकार नहीं, समाज की प्रगति की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर साथियों बात करें तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता के लिए नए उदाहरण स्थापित कर रही हैं। वे डॉक्टर, वैज्ञानिक, पायलट, खिलाड़ी, न्यायाधीश और राजनेता के रूप में देश की सेवा कर रही हैं। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: भारतीय महिलाओं ने अंतरिक्ष विज्ञान, उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इन सभी उपलब्धियों से ये स्पष्ट होता है साथियों कि अगर अवसर मिले तो महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर या उससे भी आगे प्रदर्शन कर सकती हैं।
0: जी जी।
1: इसलिए महिलाओं की क्षमता पर संदेह करने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला समानता केवल सरकार या कानून की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें अपने घर और आसपास बेटियों और बेटों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए साथियों।
0: बिल्कुल।
1: महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा और व्यवहार का विरोध करना चाहिए। विद्यालयों में विद्यार्थियों को लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। समाज में दहेज कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। बेटी और बेटे में भेद हमें नहीं करना है, महिला की बात को सम्मान से सुनना है। घर के काम में मिलकर सहयोग करेंगे, महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और अपने परिवार और गाँव में समानता की सोच को मजबूत करेंगे। याद रखिए श्रोता साथियों, समान अधिकार, समान अवसर, समान सम्मान, यही है सशक्त समाज की पहचान।
1: जी हाँ।
0: नारी को अधिकार मिले, सम्मान मिले हर बार, समानता से ही बनेगा खुशहाल हमारा परिवार। बेटी हो या बेटा प्यारा, दोनों का अधिकार हमारा। जहाँ महिला का सम्मान, वहीं तरक्की महान। इसके साथ कहना चाहेंगे कि महिला समानता की असली पहचान तब होगी जब हमें किसी महिला की क्षमता साबित करने के लिए उसके संघर्ष की कहानी बताने की जरूरत ही ना पड़े।
1: बिल्कुल।
0: जब लड़की का जन्म खुशी का अवसर हो, उसकी शिक्षा को परिवार का स्वाभाविक निर्णय माना जाए और उसके भविष्य को उसकी अपनी पसंद और प्रतिभा के आधार पर तय किया जाए। हमें यह समझना होगा कि समानता किसी एक दिन मनाया जाने वाला संदेश नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देने वाली सोच है।
1: बिल्कुल।
0: जब माँ की मेहनत को परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी समझाया जाएगा, तब बहन की राय को भाई की राय जितना महत्व मिलेगा। जब महिला को जीवन साथी के रूप में निर्णय में बराबर स्थान मिलेगा और जब गांव की महिला की आवाज ग्राम सभा और सामुदायिक बैठकों में गंभीरता से सुनी जाएगी, तभी समानता हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी।
1: बिल्कुल।
0: एक महिला को आगे बढ़ने के लिए हमेशा किसी विशेष सहारे की जरूरत नहीं होती है श्रोता साथियों।
1: जी हाँ।
0: बल्कि कई बार उसे केवल भरोसे, अवसर और अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता की जरूरत होती है। यदि परिवार उसके रास्ते में रुकावट बनने की बजाय उसका हौसला बने तो वह अपनी प्रतिभा को नई दिशा दे सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे साथियों को बता दें।
0: बिल्कुल। तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा कार्यक्रम का पता। हमारा पता है हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: नमस्कार।
1: साथी दोस्तों आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं खड़वा से अब्दुल गफ्फा डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, मोहम्मद उमर डावर जी और राजेंद्र कटारे जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा से शमशुल कमर राय, साइन फातिमा, अजनान खान, फैजाद खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पपी जी भाटिया। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं जॉन टिकिस्टो, रोजे टिकिस्टो, पॉल टिकिस्टो, विलिस जी टिकिस्टो। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आकोट महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है फूल और कांटे, गीत के बोल ही मैंने प्यार तुम्ही से किया है। इस गीत की फरमाइश करता है बालू पाटिल, सरिता पाटिल, नंदिनी पाटिल और नितिन जी पाटिल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी जी। इस गीत के अनुरोध करता है मध्य प्रदेश से विनोद मुणा, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणा, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुणत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है खड़वा मध्य प्रदेश से बीबी सालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी जिखरा डावर। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं शेब शहीदी और अनस जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से श्याम कीटी और वंदना जी कीटी। इस गीत के अनुरोध करता है हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रंजित भाटिया, मयंक जी भाटिया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मैंने प्यार तुम्ही से किया है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है प्यासा, गीत के बोल ही, आज की मुलाकात बस इतनी। इस गीत की फरमाइश करता है बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रशांत राजेंद्र जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारेश मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। बोरी खुर्द से जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राजी यादव, प्रशांत राजी यादव, जंगुताई राजी यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवी जी देशमुख और प्रणाली जी देशमुख। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं रघुवीर नगर दिल्ली से बबीता, शोभा जी, कुमारी मारवा जी, भाऊ जी और ललिता जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं नेहरू चौक पेठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती यादव, पूजा यादव, प्रसाद यादव, सोनम यादव, बेबी सिया यादव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकता यादव और संगीता जी यादव। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं आज की मुलाकात बस इतनी सी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकट रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मलियाना सरधाना मेरठ से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज़ दी है अनुराधा जी ने और उदित नारायण जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जाखुत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएच नेहावकर, निर्मला नेहावकर, विशाल नेहावकर। इस गीत के अनुरोध करता है मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इगली, सोपान इगली, आशीष मेहकर जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या जी गोस्वामी और अन्नू जी गोस्वामी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज़ दी है अनुराधा जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडुड़वारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन, गीत के बोल ही आंखें भरी भरी। इस गीत की फरमाइश करता है अफ्ताब अंसारी, रियाना अंसारी, मोहम्मद फेक अंसारी, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी, आलिया जी अंसारी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं। पुरावली से साइद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी इस गीत की अनुरोध करता है। महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रुचिकार जी रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा और तुलसी जी गोस्वामी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम जी नेताम। इसी बीच जुड़ना चाह रहे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम जी विश्वकर्मा और आशीष जी विश्वकर्मा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं आंखें भरी भरी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।
1: बेटा आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो समाने को जीत पाए।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेली वाला सी। फिल्म का नाम है हम ही राही प्यार के, गीत के बोल हैं घूंघट की आड़ सी दिलबर का। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नौसार सलमानी में भी आलिया आयन बाबू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। इस गीत की अनुरोध करता है वासी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से चन्नूलाल श्रीवास, सनिता पुष्पा श्रीवास, संजय उगदा श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं अर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका जी रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही घूंघट की आड़ में। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यतला महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है प्रेम बंधन, गीत के बोल है मैं तेरे प्यार में पागल। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, सुप्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी और ईशान जी चीपा। इस गीत के अनुरोध करता है पटिया कला दुर्ग से संजय कुमार शाहू, शशांक शाहू, सीमा जी शाहू और सुजीता जी शाहू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जोहरी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मैं तेरे प्यार में पागल। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे मैं तेरे प्यार में पागल। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नेपा नगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है कटी पतंग, गीत के बोल हैं ये श्याम मस्तानी हैं। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सरगाम छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांशी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमार जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं ये श्याम मस्तानी है। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश की इस गीत को।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का फिर से हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपसे रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए नए हैं और अपने फरमाइश के गीत आप हमें पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप एसएमएस के माध्यम से। आपको करना क्या है श्रोता साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों हमें इंतजार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि ये सिलसिला सुबह 11 बजे से आज भी बना हुआ था जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप आगे इसे मेरे साथ सुनने वाले हैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो साथियों फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और बढ़ना चाहूंगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। हमारी पहली फरमाइश की गीत का नाम है श्रोता साथियों आपको बताना चाहूंगी, और अब्बा कोई तो बताए। फिल्म का नाम है संगीत। ये फरमाइश हमारे बीच आई है लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। फरमाइश करता है ताज बदन सारी गुलाम शाबी रहे महराज जहां। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। श्रोता साथी छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी। पसंद करते हैं इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे जी, संजना खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, लड्डू चौधरी, देविका चौधरी। इसी बीच और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, नादुरा से हैं संतोष वसाने, उषा वसाने, श्री ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक जी, दिंडोरी नासिक से हैं विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण गवली, भक्ति गवली जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं और अब्बा कोई तो बताए। तब तक आप बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बहुत ही प्यारा सा गीत था, अब इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारे अगले फरमाइशकर्ता की ओर। साथियों, अगली फरमाइशकर्ता है मोहम्मद सैद अब्बासी, निखत प्रवीण अब्बासी, शेनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण ये चौकोनटी बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं। इन श्रोता साथियों की फरमाइश है, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, गीत के बोल है आजा शाम होने आई। फरमाइश करता है इस गीत के और भी हैं जो सुनना चाहते हैं इसी गीत को। नाम बताना चाहूंगी, डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गोदर मंदुरकर और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, जुड़ना चाह रहे हैं दोस्त हमारे, मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जेवीएम जैन, नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है आजा शाम होने आई। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसे कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, आजा शाम होने आई मैंने प्यार किया फिल्म का, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, आपको मैं बताना चाहूँगी। जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी हैं सैयद अमूनी और समीर लोखंडवाला जी, ताजमहल अंसारी, शारिका राठौड़ जी यवतमाल से जुड़ रहे हैं, और भी दोस्त प्रकाश पागरिया, मांगीलाल तुनककर, कमुरलाह ठेकेदार, रमेश कणककर और ओम प्रकाश राय जी, किशोर उबाले, विजय, सतीश कैलाश और सर्वेश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे व्यवसाय बड़ोदे विठल काटे, राजपाल गजपीए, रोशन देवांगन, बीपी कुलथे जी, दुर्गादास जोशी, गणेश हगवानकर, सुनीता पैदाम, नंद कुमार, शिवराम, सहदेव दामोदर, बाबूराव बावने, दीपाली जोशी, प्रकाश जैन, संगीता जैन, आबादांश जी, और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो अलिहास नगर से जुड़ना चाह रहे हैं, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश जी, राजेश साबले पाटिल जी, महेंद्र सरकटे, शैलेंद्र पाटिल, नंदा डोगरे जी और दत्ता घायल जी, अनिल बुरांडे जी, राजेश सोनी, तुलसीराम डेरे, प्रभाकर जोंदले और आरती भगत जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आजा शाम होने आई। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत जज्जर हरियाणा से आया है साथियों। फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत के बोल हैं, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे जज्जर हरियाणा से, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से, श्याम गेटे, वनना गेटे, कार्तिक गेटे, भाविका गेटे, समस्त गेटे परिवार सदस्यगण। गंजुडवारा से हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं सालिया डावर, हलीमा डावर, जगरा डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी। उज्जैन से जुड़ रहे हैं विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मोड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मोड़त जी। और भी हमारे श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, नौशाद अहमद सिद्दकी, बेगम हमीदो सिद्दकी, जिशाद अहमद सिद्दकी, शहनवाज अहमद सिद्दकी और सिद्दकी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी श्रोता साथी हैं इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण जी, ललिता जी और कार्तिक जी, संजना जी, स्वाति प्रयागराज चौधरी जी, लड्डू चौधरी जी, देविका चौधरी जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, फिल्म का नाम है हिना, गीत के बोल हैं देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में गंजुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं, अनिल जैन, सहम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भवे जैन, अंशिका जैन और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं श्रोता साथी। आपको नाम बताना चाहूंगी, जुड़ रहे हैं बाटापारा से, छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, गणेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और कलानोर से हैं श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को साथ में, गीत के साथ में गीत के बोल हैं देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइश करता है इस गीत के जुड़ना चाह रहे हैं कोलगांव से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा हिंदुस्तानी और गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। कोलगांव से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयागराज भट्ट और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू, कर्ण राहुल साहू, चंपा साहू और भी श्रोता साथी हैं जो गंजुटवारा से जुड़ रहे हैं। शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुसारी कलीमंसारी जी। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से एड नाशिद शेख, नाजर नाशिद, शाजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश हमारी भी चाहिए है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग। गीत के बोल है, मेरा यार है रब्बर का। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, जुड़ रहे हैं, शहाबगंज यूपी से हैं सूरज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, लल्ला चौरसिया जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। पारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वेदई जोशी, अंशिका जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव जदलपुर छत्तीसगढ़ से, पूनम नायडू जी खंडवा मध्य प्रदेश से, अब्दुल गफार डावर जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी कुलदीप यादव जी, अखिलेश यादव जी, श्याम सुहानी से जुड़ना चाह रहे हैं जॉन डिकेस्टो, रोजे डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विल्स डिकेस्टो जी, विजय सिंह जी, राजेंद्र नारंग जी, बजेंद्र विश्वकर्मा जी, जसवीर सिंह ठाकुर जी, शुभचंद प्रजापत जी, सुभाष योगी जी, राजू मिलानी, कमल बालोजा जी, दिनेश वर्मा जी, अर्षिता रामेश्वरम जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथियों आप सभी को, पीएश नवाकर, निर्मल नवाकर, विशाल नवाकर। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मेरा यार है रब्बर का। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों, आपसे फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

बहन बोलो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज की सभा में प्रसारित था हमारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवल लग्या इन्हें बल्ले आप हमने राय सुझाव आली शको हमारे अणपता माते हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमर अन फोन नंबर माते। अमर फोन नंबर है 9414082643। तो भाई बनो, आ तो हती आपने आज नी सभा। जिसी सभा में फेरी मुलाकात थागा तारुदी आपने बोन अंजलि नू राम राम राम राम।

जय गुरु भाई बहनों, आप सब मेहमान स्वागत करो हूँ हमारी आज की हाजिरी सभा में। आप सभा में रहे हो आपनो सामुदायिक रेडियो वॉकर रेडियो 90.8 FM माते। वो हूँ आपने हाथे आपनी बुनंजलि पारेश्वर ने आज वार बुधवार ने तारीख 26 अगस्त 2026 नो दाड़ो है। भाई बहनों, हमें देख ही रहे हो कि अपने स्टूडियो ने घड़ी में हाजिना 5 वाकी की है। तब आपने शुरुआत करो हाजिरी सभा में पुनः प्रसारित थावा वाला कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सभा ने शुरुआत करूंगा सप्ती के पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक की जोड़ कार्यक्रम आराधना तक की। इन्हें मैं अपना हम रंगा आज न सुविचार निहाते भक्ति में गीता ने अनस क्रम में आगाड़ी बढ़ूंगा अमारी ने तुम्हारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज में आ कार्यक्रम आप हम रिशको का ठीक 5:30 माते प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने जागृति भट्ट ने हाथे। इस कड़ी में भाई बहनों बीजा कार्यक्रम में शुरुआत था का जेने के बालकन बालकन इडली कार्यक्रम सच्चा बचपन आ कार्यक्रम आप हम रिशको का ठीक 6 बजे प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने आपने बहुत अंजलि पारेश्वर ने हाथे। अनस क्रम में आगाड़ी बढ़ूंगा अपने किसान भाई बहनों तक की जुड़ू कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हम भी शको का ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर एटले मौन मारे हाथे रहेगा मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट। इनिस कड़ी में अपने आगाड़ी बढ़ूंगा अपने अधिकार कानून ने नियम तक की जुड़ू कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हम भी शको का ठीक 7 बजे प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने आपकी मौन अंजलि पारेश्वर ने हाथी। श्रोताओं बीजो कार्यक्रम शुरू थागा ठीक 7:30 माते कार्यक्रम घूमर आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट ने आपने बहुत अंजलि पारेश्वर। भाई बहनों, इन्हें बाद ठीक 8 बजे आप हम लोग कार्यक्रम सपनों की उड़ान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी अना साथे मनोरंजन नी थागा पूरी भरमा जिनमें आप हम लोग कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 माते इन्हें बाद भाई बहनों ठीक 9:10 आप हम लोग कार्यक्रम शामिल कर सर। तो भाई बहनों, आ तो हती अपने हाजिर सभा में पुनः प्रसारित थावा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। अब आप सभा ने शुरुआत करो भक्ति श्रद्धा ने आस्था की जुड़ कार्यक्रम आराधना।

ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं। किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं?

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जागृति बुन आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
5: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
4: अरे जागृति बुन आपड़ी जो नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
4: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
4: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
4: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
4: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़े ने आपड़े मई देखाए तो आपड़े ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
4: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़े ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा।
3: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी भावनाओं को समझना किस तरह से शुरू कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर हम देखते हैं कशिश, हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। कौन क्या सोच रहा है, सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, किसने हमारे साथ अच्छा किया और किसने हमारे साथ बुरा किया। लेकिन श्रोता साथियों, क्या कभी हमने खुद से पूछा है कि मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों महसूस कर रहा हूं?
0: जी जी,
1: कई बार हम गुस्से में होते हैं लेकिन उसके पीछे असल में दुख होता है। कभी हम चुप रहते हैं लेकिन हमारे भीतर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। कभी छोटी सी बात हमें बहुत परेशान कर देती है और हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यही कारण है कि आज का हमारा विषय है, अपनी भावनाओं को हम समझना कैसे शुरू करें।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से बातें ढेर सारी करेंगे, लेकिन शुरुआत में पहले मनोरंजन करवा देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
0: तो साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपनी भावनाओं को समझना कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जागृति जी कि भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं है, वे हमारे भीतर चल रही परिस्थितियों और अनुभवों के संकेत होती हैं।
1: जी हाँ,
0: उन्हें समझना श्रोता साथियों हमें खुद को बेहतर जानने, सही निर्णय लेने और रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल, युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे

0: कशिश की खुशी, दुख, गुस्सा, डर, चिंता, उत्साह, निराशा, अपनापन, अकेलापन, संतोष, ये सभी हमारे भावनात्मक अनुभवों का हिस्सा है। हमारा मन हर परिस्थिति पर किसी न किसी तरह प्रतिक्रिया देता है।
1: जी जी।
0: परीक्षा का परिणाम आने पर खुशी या निराशा महसूस हो सकती है, किसी दोस्त के व्यवहार से दुख हो सकता है, किसी अवसर के मिलने पर उत्साह हो सकता है, किसी अनिश्चित परिस्थिति में डर या चिंता महसूस हो सकती है।
1: जी जी।
0: इन भावनाओं को महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। समस्या भावनाएं होना नहीं है, समस्या तब होती है जब हम अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने के बजाय उन्हें दबाने लगते हैं,
1: बिल्कुल,
0: या बिना सोचे उनके अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, पहला कदम है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ और दूसरा कदम है मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि युवावस्था जीवन का ऐसा दौर है जिसमें पढ़ाई, करियर, दोस्ती, परिवार, भविष्य और अपनी पहचान को लेकर कई तरह के अनुभव सामने आते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इस दौरान मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, जैसे कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे दोस्त मुझसे आगे क्यों निकल रहे हैं, मैं अपनी पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ, घर वाले मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं और मुझे छोटी सी बात इतनी ज्यादा क्यों परेशान कर रही है। यानी कि साथियों, अगर हम इन भावनाओं को समझना सीखते हैं तो धीरे धीरे अपने व्यवहार को भी हम समझने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि मान लीजिए कि किसी युवा को किसी दोस्त ने जवाब नहीं दिया, वह तुरंत सोच सकता है जागृति जी कि शायद वह मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों, अगर वह अपनी भावनाओं को थोड़ा ठहर कर देखेगा तो समझ पाएगा कि मुझे वास्तव में उसके जवाब न देने से दुख हुआ है और शायद मैं इस रिश्ते को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, ये पहचान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद वह जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर बात कर सकता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि गुस्सा एक सामान्य भावना है, हर इंसान को कभी ना कभी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से के पीछे कई बार कोई दूसरी भावना छिपी होती है।
1: बिल्कुल,
0: कभी हम इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि हमें अनदेखा महसूस हुआ है, कभी इसलिए क्योंकि हमें चोट लगी है, कभी इसलिए क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी गई और कभी इसीलिए क्योंकि हम किसी परिस्थिति से निराश है।
1: जी जी।
0: इसीलिए अगली बार गुस्सा आए श्रोताओं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से पूछे, मुझे वास्तव में किस बात ने परेशान किया।
1: बिल्कुल,
0: कुछ क्षण रुकना, गहरी सांस लेना, पानी पीना या थोड़ी देर उस परिस्थिति से दूर रहना हमें सोचने का अवसर दे सकता है। इसलिए याद रखिए श्रोताओं की भावनाओं को महसूस करना हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता, लेकिन उस भावना पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है ये सीखना हमारे लिए संभव है।
1: बिल्कुल, साथी श्रोता साथियों, दुख को कमजोरी मत समझिए, क्योंकि हमारे समाज में कई बार युवाओं को कहा जाता है जागृति जी कि इतनी सी बात पर दुखी क्यों हो रहे हो, मजबूत बनो, ज्यादा मत सोचो। लेकिन किसी बात से दुखी होना अपने आप में कमजोरी नहीं होती साथियों। अगर किसी घटना ने आपको बहुत ज्यादा दुखी किया है तो पहले अपने उस अनुभव को स्वीकार करना आपके लिए जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: आप खुद से ये कहें कि हाँ, मुझे इस बात से दुख हुआ है और मेरी भावना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि हम हमेशा दुख में रहेंगे। इसका अर्थ है सिर्फ इतना कि हम अपनी भावना को पहचान रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे हैं।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह का महसूस हो रहा है, हमें हमारी भावनाओं को किस तरह से समझना चाहिए,
1: जी
0: ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो भावना है उसका क्या महत्व है और हमें किस तरह की भावनाओं को समझना चाहिए। तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि असल में परेशानी क्या है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न ये कि अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ, दूसरा कि ये भावना कब से है, तीसरा कि क्या कोई घटना इसके पीछे है, चौथा कि क्या मैं किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, पांचवा ये कि इस समय मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: आराम, बातचीत, थोड़ा अकेला समय या किसी भरोसेमंद व्यक्ति का साथ। श्रोताओं, इन सवालों के जवाब तुरंत मिले ही जरूरी नहीं, लेकिन खुद से सवाल पूछना ही आत्मसमझ की शुरुआत है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों के लिए भावनाओं की डायरी बनाना मददगार हो सकता है। जैसे कि युवा साथियों, अपनी भावनाओं को समझने का एक सरल तरीका होता है उन्हें लिखना। हर दिन कुछ मिनट निकाल कर आप लिखिए, जैसे कि आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात से हुई, आज मुझे किस बात ने बहुत ज्यादा परेशान किया, किस परिस्थिति में मुझे गुस्सा आया और आज मैंने अपने बारे में क्या सीखा, और कल क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ। इससे जागृति जी धीरे धीरे हमारे अंदर भावनात्मक पैटर्न दिखाई देने लगता है। साथियों, हो सकता है कि आपको पता चले कि जब आप बहुत थके होते हैं तो छोटी बातें भी ज्यादा परेशान करती हैं।
0: बिल्कुल,
1: या जब आप किसी बात को मन में रखते हैं तो आप में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। जागृति जी, जब हमें पैटर्न समझ में आने लगते हैं तब उन्हें बेहतर तरीके से संभालना भी हमारे लिए आसान हो जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि भावनाओं को समझना जितना जरूरी है उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, अगर किसी के व्यवहार से आपको बुरा लगा है तो सीधे आरोप लगाने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि जब ऐसा हुआ तो मुझे बुरा लगा, मैं चाहती हूँ कि हम इस बारे में बात करें।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह बातचीत में आरोप कम होते हैं और अपनी भावना स्पष्ट होती है। याद रखिए श्रोताओं कि अपनी बात कहना और सामने वाले को दोष देना दोनों अलग चीजें होती है।
1: जी जी।
0: अपनी भावनाओं को सम्मान पूर्वक व्यक्त करना रिश्तों में समझ और विश्वास बढ़ा सकता है।
1: जी जी।
0: आज हम देखते हैं कशिश की सोशल मीडिया के दौर में तुलना करना बहुत आसान हो गया है। किसी की सफलता दिखाई देती है, किसी की नई नौकरी दिखाई देती है, किसी की उपलब्धि दिखाई देती है, किसी की खुशहाल तस्वीर दिखाई देती है और हम अपने जीवन को उससे तुलना करने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: फिर मन में सवाल आता है कि मैं पीछे क्यों हूँ, लेकिन हमें याद रखना होगा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीर किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी नहीं होती है।
1: जी जी।
0: हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी गति और अपनी चुनौतियां होती है। इसीलिए जब तुलना के कारण मन खराब हो तो खुद से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में पीछे हूँ या केवल किसी और की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना कर रहा हूँ।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि युवा साथियों, अगर आज आप परेशान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा परेशान रहने वाले हैं। अगर आज आप असफल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल इंसान बन रहे हैं। अगर आज आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है साथियों कि आप कमजोर हैं। आपसे कहना चाहेंगे कि भावना एक अनुभव है, आपकी पूरी पहचान नहीं। इसलिए ये कहने के बजाय कि मैं बहुत कमजोर हूँ, हम ये कह सकते हैं जागृति जी कि अभी मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा समय चाहिए।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये छोटा सा बदलाव हमारे सोचने के तरीके में बड़ा अंतर ला सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि भावनात्मक संतुलन का अर्थ ये नहीं है कि इंसान कभी दुखी या गुस्सा न हो। इसका अर्थ ये है कि अलग अलग भावनाओं के बीच भी हम खुद को समझने और संभालने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए कुछ छोटी छोटी आदतें हमें अपनानी होगी, जैसे कि हमें खुद के लिए समय निकालना होगा, अपनी भावनाओं का नाम लेना होगा कि मैं परेशान हूँ, मैं निराश हूँ, मैं उत्साहित हूँ। भावनाओं को नाम देना उसे समझने में मदद करता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने से जरूर बचे श्रोता साथियों, गुस्से या दुख में लिया गया निर्णय हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है।
1: जी जी।
0: साथ ही भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, मन में सब कुछ जमा करके रखना जरूरी नहीं है। परिवार के किसी सदस्य, शिक्षक या भरोसेमंद व्यक्ति से बात की जा सकती है। इसी के साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, नियमित भोजन करें, शारीरिक गतिविधि और आराम हमारे मन और भावनात्मक स्थिति पर असर डालते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें भावनात्मक संतुलन हमारे मन में विकसित करती है।
1: जी हाँ जागृति जी, युवा साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल ये जानना जरूरी नहीं होता है कि हमें क्या करना है।
0: बिल्कुल।
1: बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि हमारे भीतर आखिर चल क्या रहा है। कई बार करियर का फैसला केवल इसलिए गलत हो जाता है जागृति जी, क्योंकि हमारे युवा साथियों को लगता है कि वे अपनी वास्तविक इच्छा नहीं समझ पाए हैं। कई रिश्ते श्रोता साथियों केवल इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि हमने अपनी भावनाएं सही ढंग से व्यक्त नहीं की हुई होती है।
0: बिल्कुल।
1: कई अवसर इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि डर को हमने अपनी क्षमता समझ लिया होता है। और कई बार हम खुद से ही दूर हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को समझने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद को समझना भूल जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए सबसे पहले आप खुद से दोस्ती कीजिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए, अपनी भावनाओं को पहचानिए, जहाँ गलती हो उसे स्वीकार कीजिए साथियों, जहाँ मदद की जरूरत है वहाँ मदद मांगने से मत झिझकिए, और सबसे जरूरी अपने मन की हर भावनाओं को सम्मान दीजिए, लेकिन हर भावना के आधार पर तुरंत निर्णय मत लीजिए।
0: बिल्कुल, तो यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारे श्रोता साथियों को हम, कि आज की बातचीत से एक बात जरूर अपने साथ लेकर जाएं श्रोताओं, कि खुद को समझना खुद को बदलने से पहले का सबसे जरूरी कदम है।
1: हाँ।
0: जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हमें अपनी जरूरतें समझ में आती है, जब जरूरतें समझ में आती है कशिश, तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है, और जब निर्णय बेहतर होते हैं तो हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं, और जब रिश्ते और निर्णय बेहतर होते हैं तो जीवन को एक नई दिशा मिलती है। इसीलिए अगली बार जब मन में कोई भावना उठे श्रोताओं, तो उसे तुरंत दबाने या उससे भागने की कोशिश मत कीजिए, कुछ पल रुकिए और खुद से पूछिए कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, और इस समय मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए। याद रखिए, अपनी भावनाओं को समझना खुद के प्रति सम्मान की पहली सीढ़ी है। अपने मन को सुनिए, खुद को समझिए, और अपनी जिंदगी को अपनी समझ के साथ आगे बढ़ाइए। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा भी लेना चाहेंगे, क्योंकि बातें बहुत सारी हो चुकी है।
1: जी हाँ,
0: तो जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी खुद को समझते रहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में सबसे पहले हमारा आप सभी से एक सवाल है कि अगर घर में बेटा और बेटी दोनों हो तो क्या दोनों के सपनों को उड़ान भरने के लिए एक जैसा आसमान मिलता है? क्या बेटे से कहा जाता है कि तुम बड़े होकर जो बनना चाहते हो बनना, खूब पढ़ना, आगे बढ़ना और अपने पैरों पर खड़े होना? और क्या बेटी से भी यह जो चीज है उतनी ही सहजता से कही जाती है?
0: बिल्कुल,
1: कि तुम भी अपने सपनों को चुन सकती हो, खूब पढ़ सकती हो, खेल सकती हो, अपना हुनर निखार सकती हो और जीवन में अपनी पहचान बना सकती हो। साथियों, समानता की बात हम अक्सर बड़े बड़े मंचों पर करते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन समानता की असली शुरुआत किसी मंच से नहीं कशिश, हमारे अपने घर से होती है और इसकी सबसे मजबूत नींव बचपन में रखी जाती है। दोस्तों, जब बेटे को साइकिल चलाने, बाहर खेलने और अपनी पसंद चुनने की आजादी मिलती है तो बेटी को भी वही अवसर क्यों न मिले।
0: जी हाँ।
1: जब बेटी से घर के छोटे काम सीखने की उम्मीद की जाती है तो बेटे को भी घर की जिम्मेदारी क्यों न सिखाई जाए। जब बेटी की पढ़ाई को भविष्य का निवेश माना जाता है तो बेटी की शिक्षा को भी उतना ही महत्वपूर्ण क्यों न समझा जाए। यही सवाल आज हमें अपने आप से पूछना है।
0: बिल्कुल।
1: हमारा आज का विषय है कशिश, बेटा बेटी को समान अवसर देने की शुरुआत बचपन से हम कैसे करें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर आज हम कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बेटा बेटी को मिले समान अवसर देने की शुरुआत को लेकर। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारी आपसे रही थी और हम जान पाए थे साथियों कि हमें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने होंगे।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि बच्चा जन्म से यह लेकर नहीं आता कि कौन सा काम लड़के का है और कौन सा काम लड़की का। वह परिवार और समाज से देखकर ही सीखता है। अगर साथियों घर में बच्चा देखता है कि पिता भी घर के कामों में हाथ बटाते हैं, माँ भी महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी राय रखती है, भाई और बहन दोनों को पढ़ाई के समान अवसर मिलते हैं और दोनों की बात सुनी जाती है,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके मन में समानता स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। लेकिन अगर बच्चा अंजलि जी ये कुछ बातें हैं जो बार बार सुनता है, जैसे कि ये लड़कियों का काम नहीं है, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों को इतनी बाहर घूमने की जरूरत क्या है और बेटा तो घर का नाम रोशन करेगा, तो श्रोता साथियों ये सभी बातें सुनकर धीरे धीरे उनके मन में लड़के और लड़की के लिए अलग अलग मापदंड बनने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए समानता की शिक्षा किताबों से पहले घर के व्यवहार से शुरू होती है। अंजलि जी,
1: जी हाँ, यही श्रोता साथियों बात आती है शिक्षा में दोनों को समान अवसर देने की। जी हाँ श्रोता साथियों, बेटा हो या बेटी, शिक्षा दोनों का अधिकार है और भविष्य बनाने का महत्वपूर्ण साधन भी।
0: बिल्कुल,
1: कई परिवारों में कशिश आज भी सीमित आर्थिक संसाधन के कारण यह सोच देखने को मिलती है कि बेटी की पढ़ाई पर खर्च करना जरूरी है, जबकि बेटी तो आगे चलकर दूसरे घर चली जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोता साथियों यकीन मानिए, हमें यह सोच बदलनी होगी, क्योंकि बेटी की शिक्षा केवल उसकी व्यक्तिगत प्रगति नहीं होती है। शिक्षित बेटी अपने अधिकारों को समझती है, सही निर्णय लेने में सक्षम होती है, परिवार और समाज के विकास में योगदान देती है और आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर दिशा दे सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए यदि घर में संसाधन सीमित है तो समाधान यह नहीं होना चाहिए कि बेटी की पढ़ाई रोक दी जाए, बल्कि परिवार, विद्यालय और समुदाय मिलकर ऐसे रास्ते खोज सकते हैं कशिश, जिससे दोनों बच्चों की शिक्षा जो है वो जारी रह सके।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अंजलि जी, खेल का मैदान भी दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, बचपन में खेल केवल मनोरंजन नहीं होता, खेल से शरीर मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, टीम वर्क और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। लेकिन अंजलि जी, अक्सर हम बच्चों को खेल में भी लिंग के आधार पर बांट देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि बेटे को हम कहते हैं कि जाओ मैदान में खेलो और बेटी से कहते हैं कि घर के अंदर रहो, ज्यादा मत खेलो। साथियों ये सभी बातें क्यों? अगर बेटी क्रिकेट खेलना चाहती है तो उसे क्रिकेट खेलने दिया जाए। अगर बेटा नृत्य सीखना चाहता है तो उसे नृत्य सीखने दिया जाए। अगर बेटी कबड्डी खेलना चाहती है तो

0: से अवसर मिलने चाहिए।
1: जी जी।
0: और अगर बेटा चित्रकला या संगीत में रुचि रखता है तो उसका भी उत्साह बढ़ाया जाए।
1: जी हाँ।
0: यानी कि साथियों, बच्चे की रुचि को उसके लिंग से नहीं बल्कि उसकी क्षमता और पसंद से हमें जोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही निरंतर बनी रहेंगी।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से शिक्षा, खेल सभी में बेटा बेटी को हमें समानता देनी है। इसी के साथ श्रोता साथियों, घर के काम केवल बेटी की जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि समानता का सबसे व्यवहारिक पाठ घर से शुरू होता है। अक्सर बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है बर्तन रखना, कपड़े व्यवस्थित रखना, खाना बनाने में मदद करना, घर साफ करना, ये सभी। वहीं बेटों से कहा जाता है तुम रहने दो, ये काम तुम्हारा नहीं है। लेकिन अगर बेटा भी अपनी प्लेट खुद रखे, अपना कमरा व्यवस्थित करे, कपड़े तय करने में मदद करे, तो जरूरत पड़ने पर खाना बनाने में हाथ बटाए, तो उससे उसकी कोई ऐसी चीज नहीं कही जाएगी कि ये तो लड़कियों के काम है, तुम मत करो। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बच्चा बन पाता है। इसी तरह बेटी को भी केवल घरेलू कामों तक सीमित नहीं रखा जाए श्रोता साथियों, उसे भी बाहर की दुनिया समझने, निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल साथियों, इसी के साथ अगर बात करें तो घर में कोई महत्वपूर्ण अगर निर्णय होता है तो केवल बेटे की राय पूछना और बेटे की बात को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। बच्चों की उम्र और परिस्थितियों के अनुसार अंजलि जी, उनकी बात हमें सुननी चाहिए। जैसे कि कौन सी गतिविधि में भाग लेना है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किस खेल में रुचि है, किस विषय को समझने में कठिनाई हो रही है। अंजलि जी, जब माता पिता बेटे और बेटी दोनों की बात ध्यान से सुनते हैं तो दोनों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही बच्चों को ये संदेश मिलता है कि मेरी बात की भी कुछ कीमत है। कई बार समानता केवल शिक्षा तक सीमित नहीं समझी जाती, जबकि इसका संबंध दोस्तों रोजमर्रा की सुविधाओं से भी होता है। अगर बेटी को पढ़ने के लिए शांत जगह मिलती है तो बेटी को भी मिलनी चाहिए। अगर बेटी के लिए किताबें खरीदी जाती है तो बेटी के लिए भी खरीदी जानी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: अगर बेटी को प्रशिक्षण या खेल की सुविधा मिलती है अंजलि जी, तो बेटी को भी इसके अवसर मिलने चाहिए। यानी कि साथियों, समानता का मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को बिल्कुल एक ही चीज मिले। समानता का मतलब है हर बच्चे को उसकी जरूरत और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का उचित अवसर दिया जाए।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि कई बार भेदभाव जानबूझकर नहीं होता, बल्कि पुरानी सोच के कारण होता है। हम बच्चों से कहते हैं लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां नाजुक होती है, लड़कों को घर चलाना होता है, लड़कियों को घर संभालना होता है। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। लड़कियां विज्ञान, खेल, शिक्षा, प्रशासन, खेती, व्यवसाय, तकनीक और अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं लड़के भी खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, घर संभालना और परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। इसलिए बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि काम का कोई लिंग नहीं होता, काम करने की क्षमता इंसान के अंदर होती है।
1: बिल्कुल।
0: एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी। जी हाँ, जब बेटा रोता है तो अक्सर कहा जाता है लड़के रोते नहीं है। लेकिन रोना श्रोता साथियों कमजोरी नहीं होती है। दुख, डर, चिंता और असफलता जैसी भावनाओं को व्यक्त करना हर बच्चे के लिए स्वाभाविक है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह बेटी को भी हर समय चुप रखने या अपनी बात दबाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। बच्चों को सिखाएं कि अपनी बात कहना गलत नहीं है, मदद मांगना कमजोरी नहीं है और भावनाओं को समझना और व्यक्त करना जरूरी है। इससे बेटा बेटी दोनों भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ ही दोस्तों आप स्वयं भी उदाहरण बन सकते हैं। यानी कि अंजलि जी, बच्चों को समानता का सबसे प्रभावी पाठ भाषण से नहीं बल्कि माता पिता के व्यवहार से मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर घर में माता पिता एक दूसरे की राय का सम्मान करते हैं, काम को बांटकर करते हैं और निर्णयों में एक दूसरे को महत्व देते हैं तो बच्चे भी यही सीखेंगे। साथियों, अगर पिता घर के काम में सहयोग करते हैं तो बेटा भी सीखेगा घर केवल माँ या बहन की जिम्मेदारी नहीं है। अगर माँ परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी बात मजबूती से रखती है तो बेटे भी सीखेगी कि उसकी राय भी महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: कहने का मतलब यही है साथियों कि बच्चे वही ज्यादा सीखते हैं जो हमें वे करते हुए देखते हैं।
0: बिल्कुल श्रोता साथियों, अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारे गांव और समुदाय में भी बेटा बेटी की समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: गांव में बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित हो, लड़कियों को भी खेल मैदान का पूरा अवसर मिले, पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र दोनों के लिए कशिश सारी चीजें खुली होनी चाहिए।
1: जी जी।
0: बाल सभाओं में बेटियों की भागीदारी बढ़ाई जाए, बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच दिया जाए। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की जानकारी लेकर परिवार से संवाद किया जा सकता है। बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा को समुदाय की साझा जिम्मेदारी माना जा सकता है। जब पूरा समुदाय यह संदेश देता है कि बेटा और बेटी दोनों हमारे भविष्य हैं, तो सोच में स्थायी बदलाव आ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य का निर्माण केवल इस बात से नहीं होता कि उन्हें कितनी सुविधाएं मिली है, बल्कि इस बात से होता है कि उन्हें अपने बारे में क्या सोचने का अवसर मिला है। जब किसी बच्चे को बचपन से ये एहसास होता है कि उसकी आवाज सुनी जाती है, उसकी पसंद का सम्मान होता है, उसकी मेहनत को महत्व मिलता है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। इसलिए हमें अपने घरों में एक बार यह जरूर देखना चाहिए कि कहीं हमारी छोटी छोटी आदतें बच्चों के लिए अलग अलग रास्ते तो तय नहीं कर रही, किसे ज्यादा स्वतंत्रता मिल रही है, किसे ज्यादा उम्मीदें रखी जा रही हैं, किसे गलती को आसानी से स्वीकार किया जा रहा है और किसकी गलती पर ज्यादा रोक टोक हो रही है। इन सवालों के जवाब हमें अपने सोच को समझने में मदद करेंगे। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, निर्णय लेने की क्षमता, जिम्मेदारी निभाना, दूसरों का सम्मान करना और अपने फैसलों के परिणामों को समझना भी उतना ही जरूरी है। जब बेटा और बेटी दोनों इन गुणों के साथ बड़े होते हैं कशिश, तो वे न केवल अपने लिए बेहतर भविष्य बनाते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक उदाहरण बन पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणीमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेनी एक नया विषय निहाते। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि खेतनी मेड माते आपड़े कया कया पौधा लगाड़ी शकन एना नु हूं लाभ थई शके। तो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी आप तक की घणा कानी वात थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरावी दा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमवर्ता रहेजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है पर्यावरण बचाने की शुरुआत हमारे घर से हम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अंजलि, धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। ये विचार हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार, संस्थाओं या बड़े अभियानों की जिम्मेदारी नहीं है, इसकी शुरुआत हमारे अपने घर से होनी चाहिए। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं, जिस मिट्टी से हम अन्न प्राप्त करते हैं और जिन पेड़ पौधों की छाया में जीवन बिताते हैं, वे सभी प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण कोई दूर की बात नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों न हम श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले अंजलि हमने विषय से अवगत करवाया था और बातचीत भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण बचाने की शुरुआत हमें हमारे घर से करनी होगी।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज विकास की तेज गति ने मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक तो बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ गया है। बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कमी, जल संकट, प्लास्टिक कचरा, बढ़ती गर्मी और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हमें चेतावनी दे रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर इन समस्याओं का समाधान बड़े स्तर पर खोजते हैं, जबकि परिवर्तन की पहली सीढ़ी हमारे घर के दरवाजे से शुरू होती है। श्रोता साथियों, बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। यदि घर में पानी को व्यर्थ बहने से रोका जाता है, बिजली का सही उपयोग किया जाता है, कचरा अलग रखा जाता है और पौधों की देखभाल की जाती है, तो बच्चे भी इन आदतों को सहज रूप से अपनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इस तरह एक घर केवल अपना व्यवहार नहीं बदलता बल्कि आने वाली पीढ़ी की सोच भी बदल देता है। क्योंकि जागृति जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें किसी बड़े अभियान का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव ही सबसे प्रभावी कदम बन सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, जल जीवन का आधार है, फिर भी कई घरों में नल खुला छोड़ देना, आवश्यकता से अधिक पानी बहाना या पानी के रिसाव को नजरअंदाज करना सामान्य बात समझी जाती है। अगर हम सच में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना चाहते हैं तो पानी का हमें सम्मान करना होगा, नल का अनावश्यक उपयोग रोकना होगा, रिसते हुए नल को ठीक करवाना होगा, कपड़े और बर्तन धोते समय पानी की बर्बादी कम करनी होगी तथा वर्षा जल को सहेजने जैसे प्रयास घर से ही किए जा सकते हैं।
1: जी जी,
0: जब लाखों घर पानी बचाने लगेंगे तब उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि बिजली की बचत को अक्सर केवल पैसे बचाने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन श्रोता साथियों, इसका संबंध पर्यावरण से भी है। आवश्यकता न होने पर पंखे, बल्ब और अन्य विद्युत उपकरण बंद करना एक छोटी सी आदत है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इससे ऊर्जा की बचत होती है। दिन में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करना, ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग करना और बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करना प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि बिजली की बचत केवल बिल कम करना नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी कम करती है।
0: बिल्कुल,
1: हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कचरे की समस्या का समाधान रसोई से होता है, क्योंकि जागृति जी, घर से निकलने वाला कचरा पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यदि गीले और सूखे कचरे को एक साथ फेंक दिया जाए तो उसका उचित निपटान हो जाता है, इसलिए घर में ही कचरे को अलग अलग करना एक महत्वपूर्ण कदम है। सब्जी और फलों के छिलके जैसे जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है, कागज, धातु और अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को अलग रखा जा सकता है। इससे कचरे की मात्रा कम करने और उपयोगी सामग्री को दोबारा इस्तेमाल करने में मदद मिलती है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करें। श्रोताओं, प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसका ज्यादा और लापरवाही से किया गया उपयोग पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला साथ में रखकर बार बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को प्राथमिकता देना और अनावश्यक प्लास्टिक से बचना आसान कदम है। हमें ये सोच विकसित करनी होगी कि सुविधा के लिए इस्तेमाल की गई वस्तु हमारे पर्यावरण पर कितना बोझ डाल रही है। एक परिवार अगर प्लास्टिक का उपयोग कम करता है तो शायद बदलाव छोटा दिखाई दे, लेकिन यही आदत जब लाखों परिवार अपनाते हैं तो परिणाम बहुत बड़ा होता है। पेड़ केवल सुंदरता नहीं बढ़ाते श्रोताओं, बल्कि पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: जी हाँ,
0: इसलिए घर के आसपास पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना पर्यावरण संरक्षण का सुंदर तरीका है। पौधा लगाना पहला कदम है श्रोताओं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेना उससे भी महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे पौधों को प्राथमिकता देनी होगी जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। अंजलि, बच्चों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल से जोड़ना उनके भीतर प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी पैदा करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को हम एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है कि पर्यावरण को बचाने की शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। श्रोता साथियों, पर्यावरण संरक्षण का संबंध हमारी थाली से भी है। भोजन तैयार करने में पानी, ऊर्जा, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। इसलिए भोजन को व्यर्थ फेंकना केवल अन्न की बर्बादी नहीं बल्कि अनेक संसाधनों की बर्बादी है। घर में आवश्यकता के अनुसार भोजन बनाना, बचा हुआ जो भोजन होता है उसका उचित तरीके से उपयोग करना और स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को महत्व देना पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार है।
1: बिल्कुल।
0: आज उपभोक्तावादी जीवन शैली में जागृति जी, हम कई वस्तुओं को थोड़ी सी खराबी के बाद फेंक देते हैं। हमें खरीदो और फेंको की आदत के स्थान पर मरम्मत करो और फिर उपयोग करो की सोच को विकसित करना होगा। क्योंकि श्रोता साथियों, पुराने कपड़ों का

0: उपयोग दूसरे कामों में किया जा सकता है। बोतलों और डिब्बों का उपयोगी वस्तुओं के भंडार में किया जा सकता है। कई चीजों की मरम्मत करके उनकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। इससे कचरा कम होता है और प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी होती है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की मजबूत नींव बच्चों से रखी जा सकती है। बच्चों को केवल किताबों में पर्यावरण के बारे में पढ़ाने के बजाय उन्हें व्यवहार में भी शामिल करना होगा। घर में पौधों की जिम्मेदारी देनी होगी, पानी बचाने की आदत सिखानी होगी, कचरे अलग करवाना सिखाना होगा, बिजली के अनावश्यक उपयोग को रोकना होगा। साथ ही ये सारी चीजें उनके व्यवहार पर भी असर करती हैं। बच्चे जब स्वयं पर्यावरण मित्र आदत अपनाएंगे तो वे अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि घर एक छोटे पर्यावरण विद्यालय की भूमिका निभा सकता है।
0: बिल्कुल श्रोता साथियों, पर्यावरण संरक्षण तब अधिक प्रभावी होता है जब पूरा परिवार मिलकर प्रयास करे। परिवार महीने की शुरुआत में कुछ छोटे संकल्प ले सकता है। पानी की बर्बादी नहीं करेंगे, बिजली व्यर्थ नहीं चलाएंगे, कचरा अलग करेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और पौधे की देखभाल करेंगे। इन संकल्पों को केवल कागज पर लिखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें दैनिक जीवन में उतारना जरूरी है। जब परिवार अपनी आदतों की नियमित समीक्षा करता है तो छोटे प्रयास धीरे धीरे स्थायी व्यवहार में बदल जाते हैं। श्रोता साथियों, एक घर की अच्छी आदत दूसरे घर को प्रेरित कर सकती है। यदि एक परिवार अपने घर के बाहर स्वच्छता रखता है, पौधे लगाता है और कचरे का सही प्रबंधन करता है तो पड़ोसी भी जागृति से उससे प्रेरणा ले सकता है। इसी तरह एक मोहल्ला, एक गांव और फिर पूरा समाज पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बन सकता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले के प्रयास से क्या होगा। इतिहास में बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू हुए हैं।
1: जी हाँ।
0: एक बूंद दूसरी बूंद से मिलकर जलधारा बनती है और एक छोटा पौधा समय के साथ विशाल वृक्ष बन सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आधुनिक तकनीक पर्यावरण संरक्षण में हमारी मदद कर सकती है। बिजली और पानी की खपत पर नजर रखने वाले उपकरण, ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से कागज की बचत और पर्यावरण संबंधी जानकारी साझा करना इसके उदाहरण है। लेकिन श्रोताओं, तकनीक का उपयोग भी जिम्मेदारी से करना होगा। पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सामान्य कचरे में फेंकने की बजाय उनके उचित निपटान की व्यवस्था करनी होगी। हम पर्यावरण दिवस या किसी विशेष अवसर पर पौधे लगाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं और पर्यावरण बचाने के संदेश देते हैं। ये प्रयास महत्वपूर्ण है श्रोताओं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं हो सकता। वास्तविक बदलाव तब आएगा अंजलि जब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी हमारी रोजमर्रा की आदत बन जाएगी। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, वैसे ही प्रतिदिन प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल अपने निर्णय स्वयं लेने का नाम नहीं है बल्कि अपने संसाधनों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग होना भी है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई परिवार पानी को बचाता है, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करता है, स्थानीय संसाधनों का सम्मान करता है और कचरे को कम करता है तो वह अपने स्तर पर आत्मनिर्भर और जिम्मेदार जीवन की ओर बढ़ता है। इसी दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन, समाज और भविष्य के स्वराज से भी जुड़ा हुआ है। प्रकृति पर निर्भर रहते हुए प्रकृति का सम्मान करना ही समझदार समाज की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसी बहुत बड़े बदलाव की प्रतीक्षा नहीं करनी है। शुरुआत हम आज से भी कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं और अपने घर से भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक नल बंद करना, एक पौधा लगाना, एक प्लास्टिक की थैली से बचना, एक बल्ब अनावश्यक रूप से बंद करना और एक मुट्ठी कचरा सही जगह डालना, ये छोटे छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन की नींव है। हमें याद रखना होगा श्रोताओं की आने वाली पीढ़ियां हमसे ये नहीं पूछेंगे कि हमने पर्यावरण पर कितने भाषण दिए थे, बल्कि ये पूछेंगे कि हमने उनके लिए कैसी धरती छोड़ी थी। इसलिए आज जरूरत है कि हर घर एक छोटा सा संकल्प हो। प्रकृति केवल हमारे उपयोग की वस्तु नहीं, हमारे जीवन का आधार है। हम इसे बचाएंगे, संवारेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँचाएंगे। क्योंकि पर्यावरण बचाने की शुरुआत किसी दूर के जंगल से नहीं, हमारे अपने घर से होती है और जब हर घर बदलेगा तभी धरती का भविष्य बदलेगा।
0: तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत रही है और अब हम देख रहे हैं कि समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को क्यों ना हम एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरा ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी निमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार?
1: नमस्ते अंजलि
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: थैंक यू सो मच अंजलि, मुझे भी वागड़ रेडियो के साथ जुड़ के और काफी अच्छा महसूस होता है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप समय समय पर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ती हैं और हमारी जो महिलाएं हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ जो विशेष बातें होती हैं उनसे उनको अवगत करवाती हैं। जैसा कि महिला समानता दिवस मना रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि महिला समानता दिवस क्यों मनाया जाता है और आज के समय में महिला समानता का हमारे समाज के लिए क्या महत्व है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये अंजलि। महिला समानता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार है, महिलाओं को भी सम्मान, अवसर और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आज महिला समानता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के समान अवसर मिलते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव परिवार, समुदाय और पूरे समाज पर देखने को मिलता है। और इसीलिए महिला समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि जब हम एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज की बात करते हैं तो इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बताया कि महिला समानता दिवस क्यों मनाया जाता है और ये क्यों जरूरी है मनाना, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को समान अधिकार मिलने के बावजूद भी उन्हें किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: ये तो बात सही है बिल्कुल कि ठीक है, महिला को समानता मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ता है। जैसे गांव और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अगर अपन देखें तो कानूनी रूप से उनको समान अधिकार मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, संपत्ति पर अधिकार और सबसे बड़ी चीज जो है निर्णय लेने में भागीदारी,
0: बिल्कुल
1: ये इस तरह की चुनौतियां हैं जिसके कारण महिलाओं को बहुत बड़े नुकसान, हमारे समाज को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इसको देखें तो सामाजिक सोच, घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ और आर्थिक निर्भरता भी उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। इसलिए जरूरत है कि महिलाओं को केवल अधिकारों की जानकारी नहीं बल्कि उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए हम अवसर प्रदान करें, संसाधन उपलब्ध करवाएं और परिवार व समाज का उनको सहयोग मिले ये सुनिश्चित करें।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकार तो हमारे संविधान में लिखे गए हैं हमारे लिए, लेकिन उन अधिकारों की जानकारी न होने के कारण बहुत सी बार महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर उन अधिकारों के बारे में महिलाएं जागरूक होंगी तो इन सारी चीजों से वो कुछ हद तक बच सकती हैं और इसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। तो मेरा अगला सवाल है कि शिक्षा महिला समानता की दिशा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अगर किसी परिवार में बेटा और बेटी की पढ़ाई को लेकर कुछ भेदभाव किए जा रहे हैं तो उस परिवार को क्या समझना होगा।
1: बिल्कुल, शिक्षा जो है उसको मैं ये कहूंगी कि अगर हम महिला समानता की बात करते हैं तो शिक्षा उसकी नींव है, बहुत ही मजबूत नींव के रूप में देख सकते हैं हम इसको, क्योंकि शिक्षा से ही लड़कियों को आत्मविश्वास मिलता है, अपने अधिकारों की समझ और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है वो, और इससे ही वे अपने जीवन और भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय ले पाती है।
0: बिल्कुल,
1: और अगर परिवार में हम देखें कि बेटी और बेटे की पढ़ाई में भेदभाव होता है तो उसे समझना चाहिए कि शिक्षा दोनों का समान अधिकार है, किसी एक की प्राथमिकता नहीं है। बेटी को शिक्षित करना केवल उसके भविष्य में निवेश नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के बेहतर भविष्य में निवेश करना होता है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी के समय में तो बदलाव हम देखते हैं लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी बेटियां जो हैं वो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं और बेटों को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो उन सारे जो व्यक्ति हैं, जो परिवार के लोग हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा कि बेटी को भी पढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना हम एक बेटे को पढ़ाते हैं। वहीं अब बात आती है कि घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर अक्सर समाज और सभी जो लोग हैं वो यही सोच रखते हैं कि ये तो महिला की जिम्मेदारी है। तो क्या पुरुष और महिलाओं के बीच घरेलू जिम्मेदारी का समान बंटवारा होना भी महिला समानता का हिस्सा है?
1: बिल्कुल, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं अंजलि कि आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी है ना, रोजगार से जुड़ने लगी है, ना। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में भी देखें तो महिला खेत में जाती है, खेती का काम करती है। तो जब महिला बाहर की दुनिया में इतना कुछ कर रही है तो फिर उसे घरेलू काम जो होते हैं, घरेलू जिम्मेदारियां जो होती है, उसमें उसे अकेले काम क्यों करना पड़ता है? ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल है कि घर का काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की जिम्मेदारी, ये केवल महिलाओं की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब पुरुष और महिलाएं मिलकर घरेलू काम बांटते हैं ना, तो महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, आराम करने का समय भी मिलता है और अपने विकास के लिए भी समय मिल पाता है। और यही वास्तविक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। इसी तरह हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता के लिए बहुत जरूरी है। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि ग्रामीण महिलाएं छोटे स्तर से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत कैसे कर सकती हैं?
1: देखो, ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें तो गांव में एक सबसे बड़ी चीज होती है स्वयं सहायता समूह। तो महिलाएं अगर स्वयं सहायता समूह से जुड़ेंगी, खाली जुड़ना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह से जो आर्थिक मदद उनको मिल रही है उसका भरपूर उपयोग वो खुद कर सके, खुद निर्णय ले सके उस पैसे को खर्च करने का।
0: बिल्कुल।
1: या छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती है। अपन आदिवासी क्षेत्र में इसको खेती और पशुपालन से भी जोड़ के देख सकते हैं कि महिलाएं घर में पशुपालन को बढ़ावा दे, खेती से जुड़े जो जिस तरह से हम सच्ची खेती की बात करते हैं तो सच्ची खेती की चीजों को सीख के और उनको अपने खेतों में अपनाए, या फिर कोई स्थानीय उत्पाद हो सकते हैं, हस्तशिल्प की कोई चीजें हो सकती है, उनसे अपने छोटे छोटे निवेश करें और व्यवसाय की अगर शुरुआत करें तो शुरुआत जो होती है ना अंजलि, वो हमेशा छोटी होती है, लेकिन अपनी आय और उसका जब निर्णय लेने का अधिकार महिला का खुद का होगा तो एक आर्थिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकेगी।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं को अपने अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी न होने के कारण कई बार अपने हक से वंचित रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं जानकारी कहाँ से प्राप्त करें और किन किन संस्थानों के माध्यम से वो मदद ले सकती हैं?
1: देखो, महिलाओं को ये तो है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाना पड़ता है, उनको पता नहीं होता है, जानकारी का अभाव होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, नियमित रूप से वो ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, यहाँ पे लोगों से मिलती रहे। स्वयं सहायता समूह में भी अगर वो मिलेगी तो वहाँ पे भी उसकी जानकारी बढ़ेगी।
0: बिल्कुल।
1: इसके अलावा गांव स्तर पे या ग्राम पंचायत स्तर पे महिला एवं बाल विकास विभाग है, वहां पर भी संपर्क कर सकती है। और इसके अलावा हमारा सामुदायिक रेडियो सबसे बड़ा माध्यम है इसके लिए। तो अगर वो लगातार हमारा सामुदायिक रेडियो भी सुनती रहेगी ना तो उससे भी उसकी जानकारी बहुत बढ़ेगी।
0: बिल्कुल।
1: और इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि महिलाएं खुद आगे बढ़े, जानकारी प्राप्त करें, सवाल पूछे, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। जब तक वो खुल के अपनी बात कहेगी नहीं, अपनी समस्या रखेगी नहीं, तब तक उसको समाधान मिलने के मौके कम ही मिल पाएंगे।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज महिला समानता को लेकर हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी महिला के साथ घर, कार्यस्थल, समाज में भेदभाव किया जा रहा है तो उसे चुप रहने के बजाय क्या कदम उठाने चाहिए और परिवार और समुदाय उसकी मदद कैसे कर सकता है?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अंजलि ये, क्योंकि कई बार महिलाएं समझ रही होती है कि उनके साथ गलत हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: उसके बावजूद भी वो चुप रहना चाहती है, उसके बावजूद भी वो चुप रहती है, चुप रह के सहती है। ये सही नहीं है, ये गलत है।
0: बिल्कुल।
1: चुप रहने की बजाय उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति या परिवार या ग्राम पंचायत स्तर पे या महिला समूह या संबंधित विभाग से मदद लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अगर जरूरत पड़ने पर उसको उपलब्ध कानूनी सहायता और शिकायत व्यवस्था का सहारा लेने की जरूरत पड़े ना तो वो भी लेना चाहिए उसको। और परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे महिला को दोष देने या चुप कराने के बजाय उसकी बात को सुने, उसका साथ दे और उसके लिए एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाए।
0: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि किस तरीके से महिलाओं को अगर ऐसी कुछ चीजें लगती हैं तो उन्हें चुप नहीं रहना है, क्योंकि एक बार हमने गलत चीज को सहन करना शुरू कर लिया तो वो फिर हमारी आदत बन जाती है और यह आदत जो है वो आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए समय रहते अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और ऐसी जो चीजें होती हैं उसे हमें लड़ने की जरूरत है, चुप नहीं रहना है। इसी के साथ अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे वागर क्षेत्र की महिला, पुरुष और जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे इन सारी चीजों में बदलाव आए और अधिक से अधिक जो महिलाएं हैं उनको लेकर जो समानता की हम बात करते हैं उसको लेकर लोग जागरूक हो।
1: मैं वागर क्षेत्र के सभी परिवारों से यही संदेश देना चाहूंगी कि बेटी और बेटे में कोई भेदभाव ना करें। बेटियों को शिक्षा, रोजगार और अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने के समान अवसर दें।
0: बिल्कुल।
1: और घर की जिम्मेदारियों में भी बेटियों व महिलाओं का साथ दें। मेरा पुरुष साथियों से विशेष आग्रह है कि समानता की शुरुआत अपने घर से करें।
0: बिल्कुल।
1: जब परिवार बेटियों पर भरोसा करेगा और महिलाओं के निर्णयों का सम्मान करेगा तभी हमारा वागड़ सशक्त परिवारों और समान अवसरों वाला मजबूत समाज बन सकेगा।
0: बिल्कुल। तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप आज हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, आपने मुझे ये विशेष अवसर दिया जहाँ पे मैं हमारी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के लिए कुछ बोल सकी और अपनी बात रख सकी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वागड़ क्षेत्र की हर महिला और हर पुरुष तक हमारा ये संदेश पहुँच सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: આપણે આપણે વ્યાસમાં મધુબન જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હૈ કે મહિલા સમાનતા દિવસ મનાવવો કેમ જરૂરી હૈ ને હર તે સબને અણા વારામાં વિચાર કરવો જોઈએ ને સોરાને સૂર્યને વેશમાં સમાનતા હોવી જોઈએ। તો આશા કરો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા।

0: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत निश्चय खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्कालिक ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज तक आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है, ऐसे स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहाँ हम बात करते हैं उन सपनों की जो आँखों से पलते हैं, दिल में जगह बनाते हैं और सही दिशा मिलने पर जिंदगी की पहचान बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर परिवार की अपनी एक पहचान होती है। कोई पीढ़ियों से खेती करता आया है, किसी के घर में पशुपालन की परंपरा है, तो कोई हस्तशिल्प बनाता है, तो कोई कपड़े सिलता है, तो कोई दुकान चलाता है, तो किसी परिवार की पहचान किसी खास हुनर से होती है। जी हाँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने यही काम करके परिवार चलाया, तुम भी इसे आगे बढ़ाओ। और नई पीढ़ी कहती है कि हम इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। यहीं से शुरू होती है एक दिलचस्प कहानी। जी हाँ, क्या पीढ़ियों के बीच टकराव है या बदलाव की शुरुआत? कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हम इसी सवाल को समझेंगे, क्योंकि शायद असली सवाल यह नहीं है कि पुरानी पीढ़ी सही है या नई पीढ़ी। असली सवाल यह है कि क्या पुराने अनुभव और नए विचार एक साथ मिलकर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं? जी हाँ, तो दोस्तों, आज कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पुराने अनुभव और नए विचार एक साथ मिलकर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो श्रोता साथियों, मान लीजिए कि गांव में मोहन का परिवार कई पीढ़ियों से खेती करता आया है। मोहन के दादा खेती करते थे, उसके पिता भी खेती करते हैं। घर की जमीन, बेल, ट्रैक्टर, बीज, मंडी, इन सब की बातें मोहन ने बचपन से सुनी है। लेकिन मोहन पढ़ाई पूरी करने के बाद कहता है कि बाबा, मैं खेती छोड़ना नहीं चाहता, मैं खेती को बदलना चाहता हूँ। तो पिता चौंक कर पूछते हैं, बदलना क्या है, खेती तो खेती है, हमारे बाप दादा भी यही करते आए थे। फिर मोहन कहता है कि बाबा, पहले हम सिर्फ फसल उगाते थे, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी उपज को सीधे बाजार तक पहुँचाएं, खेत में नई तकनीक इस्तेमाल करें, पानी की बचत करें, सब्जियों की अलग अलग फसल लें और जो पैदा हो उसे साफ करके पैक करके बेचें। पिता कहते हैं कि इतने साल से हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, इसमें नया क्या है। फिर मुस्कुराकर मोहन बोलता है, दोस्तों कि नया काम नहीं बाबा, उसी काम को नए तरीके से करने की कोशिश है। दोस्तों, यही अंतर जिसे समझना जरूरी है। नई पीढ़ी हमेशा पुराना काम छोड़ना नहीं चाहती, कई बार वह चाहती है साथियों के पुराने काम को नए समय के अनुसार बदला जाए। जी हाँ, तो श्रोता साथियों, आखिरकार ये टकराव पैदा क्यों होता है, तो बताना चाहूंगी कि परिवार में जब कोई युवा अपने पारंपरिक काम को लेकर नया विचार रखता है तो सबसे पहली समस्या होती है सोच का अंतर। जी हाँ, बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी अनुभवों के आधार पर बनाई है, उन्होंने मुश्किल समय देखा है, कम संसाधनों में परिवार चलाया है, जो रास्ता सुरक्षित लगा उसे अपनाया। वहीं नई पीढ़ी ने दुनिया को अलग तरीके से देखा है, उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, नई तकनीक है, नई जानकारी है और दूसरे राज्यों और देशों के लोगों के काम देखने का अवसर है, इसलिए उनका नजरिया स्वाभाविक रूप से अलग होगा। बुजुर्ग कह सकते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, युवा कह सकता है लेकिन आज समय बदल गया है। दोस्तों, दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं, समस्या तब पैदा होती है जब एक पक्ष दूसरे को सुनना ही बंद कर देता है। जी हाँ श्रोता साथियों, परंपरा सिर्फ पुराना काम नहीं है, हमें ये समझना होगा कि परंपरा का मतलब केवल वही काम करते रहना नहीं है जो पहले किया जाता था। परंपरा का अर्थ है पीढ़ियों से मिली सीख, अनुभव और ज्ञान को संभाल कर आगे बढ़ना। जी हाँ, अगर परिवार खेती करता आया है तो उसके पास मिट्टी को समझने का अनुभव है, उसे मौसम के बदलाव की पहचान हो सकती है, उसे स्थानीय बीजों की जानकारी हो सकती है, उसे पशुपालन का अनुभव भी हो सकता है साथियों, इसी के साथ उसे स्थानीय बाजार की समझ हो सकती है। नई पीढ़ी के पास दूसरी तरह की ताकत है, उसे डिजिटल बाजार की जानकारी हो सकती है, वह सोशल मीडिया का उपयोग कर सकती है, ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकती है, नई मशीनों और तकनीकों के बारे में जान सकती है, उत्पाद की पैकेजिंग और ब्रांडिंग समझ सकती है। तो दोस्तों, अब जरा सोचिएगा कि अगर दोनों ताकतें एक साथ आ जाए तो क्या होगा। एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ नहीं सोच, एक तरफ परंपरा तो दूसरी तरफ तकनीक, एक तरफ जमीन से जुड़ा ज्ञान, दूसरी तरफ बाजार की नई समझ, यही मिलकर बदलाव पैदा कर सकता है। तो जैसा कि दोस्तों, कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर हमारी आपसे बातें चल रही हैं, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों अब जानना चाहेंगे कि नई पीढ़ी के सपनों को केवल जिद नहीं समझना है। जी हाँ, कई बार युवा जब परिवार के पारंपरिक काम में कुछ नया करने की बात करता है तो उसे तुरंत कह दिया जाता है, तुम्हें क्या पता है, हमने जिंदगी लगा दी इस काम में, नई नई बातें मत करो, तुम अभी बच्चे हो। लेकिन दोस्तों, हर नया विचार सिद्ध नहीं होता। कभी कभी वह उस युवा के भीतर छिपे सपनों की आवाज होती है। हो सकता है वह परिवार के काम को छोड़ना नहीं चाहता, हो सकता है कि वह उसे आगे ले जाना चाहता हो सकता है कि वह कह रहा हो, पिताजी आपने जो बनाया है मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता, मैं उसे और मजबूत बनाना चाहता हूँ। यह बात सुनने और समझने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी केवल युवाओं की तरफ से नहीं है, नई पीढ़ी को भी समझना होगा कि नया विचार होना और सही विचार होना एक ही बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज इंटरनेट पर सफल हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे गांव या परिवार में भी उसी तरह सफल होगी। इसलिए युवा जब कोई नया विचार लेकर आए तो उसे केवल यह नहीं कहना चाहिए कि आप पुराने जमाने के हैं, बल्कि कहना चाहिए कि आइए इसे समझते हैं, थोड़ा करके देखते हैं, अगर फायदा हुआ तो आगे बढ़ाएंगे। यानी विरोध नहीं प्रयोग, बहस नहीं बातचीत, सिद्ध नहीं योजना। जी हाँ दोस्तों, बदलाव का मतलब सब कुछ बदल देना नहीं होता है। बदलाव का मतलब यह नहीं कि पुरानी हर चीज गलत है। आधुनिकता का मतलब भी नहीं कि नई हर चीज सही है। हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर परिवार पारंपरिक तरीके से खेती करता है तो नई पीढ़ी मिट्टी की जांच, बेहतर सिंचाई तकनीक, मौसम की जानकारी और बाजार की मांग के अनुसार फसल का चयन जैसी चीजें जोड़ सकती हैं। अगर परिवार हस्तशिल्प का काम करता है तो युवा उसकी डिजाइन को आधुनिक रूप दे सकता है, उसकी तस्वीरें डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है और नए बाजार तलाश सकता है। जी हाँ, अगर परिवार की छोटी दुकान है तो युवा डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन प्रचार और सामान की बेहतर व्यवस्था जोड़ सकता है। अगर परिवार पशुपालन करता है तो युवा पशु स्वास्थ्य, पोषण, नस्ल सुधार और बाजार की नई जानकारी का उपयोग कर सकता है। यानी कि काम वही हो सकता है लेकिन उसका तरीका बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों का अनुभव परिवार की ताकत है, लेकिन कभी कभी बुजुर्गों के साथ एक डर भी जुड़ जाता है। अगर नया तरीका असफल हो गया तो यह डर दोस्तों स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक मेहनत करके परिवार को संभाला हो, वह जोखिम लेने से डर सकता है। ऐसे में युवा को यह नहीं कहना चाहिए कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता, बल्कि कहना चाहिए आपका अनुभव मेरे साथ है, इसलिए मैं यह कोशिश करना चाहता हूँ। यह वाक्य पीढ़ियों के बीच दूरी कम कर सकता है। श्रोता साथियों, अगर युवा अपना सपना छिपा कर रखेंगे तो परिवार उसे समझ ही नहीं पाएगा। अगर माता पिता बिना सुने फैसला कर देंगे तो युवा खुद को अकेला महसूस कर सकता है। इसलिए परिवार में बातचीत की जगह बननी चाहिए। एक दिन बैठकर पूछा जा सकता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, और युवा से भी पूछा जा सकता है कि तुम्हारे विचार के पीछे योजना क्या है। फिर मिलकर सवाल किए जा सकते हैं, जैसे कि इसमें कितना खर्चा आएगा, जोखिम कितना है, फायदा कितना हो सकता है, शुरुआत छोटे स्तर से कैसे हो सकती है, कौन सी चीज परिवार के पुराने अनुभव से मदद ले सकती है और कौन सी नई जानकारी सीखनी होगी। जब सपना भावना से निकलकर योजना बन जाता है तब उसे समझना आसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि परिवार की परंपरा सम्मान के योग्य है, क्योंकि हर बच्चे का भविष्य पहले से तय नहीं किया जा सकता। किसी किसान का बच्चा किसान बने जरूरी नहीं, किसी दुकानदार का बच्चा दुकानदार बने जरूरी नहीं, किसी कारीगर का बच्चा उसी काम को करे यह भी जरूरी नहीं। हर व्यक्ति की अपनी रुचि, क्षमता और सपना होता है। किसी को शिक्षक बनना है तो किसी को कलाकार, किसी को उद्यमी बनना है तो किसी को सरकारी सेवा में जाना है, किसी को तकनीकी क्षेत्र में जाना है।
श्रोता साथियों, परिवार की परंपरा दिशा दे सकती है लेकिन जिंदगी का पूरा नक्शा नहीं बना सकती। पर अगर युवा पारंपरिक काम से अलग रास्ता चुनता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह परिवार या परंपरा का सम्मान नहीं करता। सम्मान दिल में हो सकता है भले ही पेशा अलग हो। इसलिए दोस्तों, जब उसे सिर्फ मैं यह करूंगा कहने के बजाय ये दिखाना होगा कि वह इसे किस तरह बेहतर करेगा। मान लीजिए कि परिवार मिट्टी के बर्तन बनाता है, पुरानी पीढ़ी कहती है कि इसे क्या कमाई होगी। युवा कहता है कि हम सिर्फ पारंपरिक घड़े नहीं बनाएंगे, हम आधुनिक डिजाइन की मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, उन्हें सजाएंगे, स्थानीय बाजार के साथ साथ दूसरे शहरों तक पहुँचाएंगे। अब वही पारंपरिक काम एक नया अवसर में बदल सकता है। यानी कि परंपरा को छोड़ना ही बदलाव नहीं, परंपरा में नई संभावनाएं खोजना भी बदलाव है। तो श्रोता साथियों, आज अपने घर में एक सवाल जरूर पूछिए, हमारे परिवार के पारंपरिक काम में ऐसा क्या है जिसे नई सोच के साथ और बेहतर बनाया जा सकता है। और युवाओं से एक सवाल कि क्या आपने सपनों को सिर्फ सपना मान रखा है या उसे पूरा करने के लिए ज्ञान, योजना और मेहनत भी जुटा रखी है। क्योंकि सपनों की उड़ान सिर्फ आसमान देखने से नहीं होती, उड़ान तब होती है जब अनुभव हमारे पंख बने, नई सोच हमारी दिशा बने और मेहनत हमें मंजिल तक ले जाए। परंपरा और परिवर्तन एक दूसरे के दुश्मन नहीं, जरूरत सिर्फ इतनी है कि पुरानी पीढ़ी अपने अनुभव का साथ आगे बढ़ाए और नई पीढ़ी अपनी नई सोच का हाथ थामे। शायद इस मिलन से वह भविष्य बनेगा जिसका सपना दोनों पीढ़ियां देखती है, एक ऐसा भविष्य जिसमें जड़ों का सम्मान भी हो और नई उड़ान की आजादी भी। इसी सोच के साथ आज कार्यक्रम सपनों की उड़ान से हम विदा लेना चाहेंगे। कार्यक्रम में होने वाली बातचीत और गीत संगीत आपको अवश्य पसंद आए होंगे, ऐसी आशा में रखती हूँ। लेकिन जाने से पहले एक और प्यारे से गीत के साथ में आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, सपना तब बड़ा बनता है जब उसे पूरा करने की हिम्मत पीढ़ियों को छोड़ देती है। इन्हीं बातों के साथ आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने में देखाय तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। बहनों, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर हूँ कि आज की सभा में प्रसारित था वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवल लग्या इन्हें बल्ले आप मने राय सुझाव आली शको हमारे अणपता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9414082643। तो भाईन बनो, आ तो हती आपने आसनी सभा। विजय सभा में फेरी मुलाकात थागा। तारुदी आपनी बोन अंजलि नु राम राम, राम राम।